0: தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। 6 बजने वाले हैं, अब सुनेंगे समाचार।
2: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय का गर्मजोशी से स्वागत के लिए आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वागत समारोह में स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
1: सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने बताया कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाती है। उच्चायुक्त ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूती और विविधता दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में कल 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के चालू वर्ष में 7% की वृद्धि दर के अनुमान के साथ भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए है। IMF द्वारा कल जारी की गई प्रमुख अर्धवार्षिक रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार अगले वर्ष भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 6.4% की मामूली वृद्धि का अनुमान है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने CSIR UGC NET जून 2026 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। ये परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट www.csirnet.nta.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। अमरीकी सेना ने कहा है कि वह ईरान पर फिर से हवाई हमले कर रही है। ये हमले एक दिन पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा जहाजों पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुए। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पहुंचने की संभावना है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से वर्षा जारी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi will hold

0: जिंदगी बहुत छोटी है, इसे ऐसे लोगों के साथ बिताएं जो आपको हंसाएं, खुश रखें और आपको महसूस कराएं कि आप उनके लिए कितने जरूरी हैं। इसी सुविचार के साथ आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर आज सवेरे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम में हम एक बार फिर हाजिर हैं देश दुनिया के अब तक के समाचार और वो सभी जानकारी लेकर जिनका आपसे है सरोकार। नमस्कार, सुप्रभात। आज सवेरे के संघ के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सरबजीत कौर। सरबजीत, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार मुकेश, एंड अ वेरी वार्म एंड लविंग वेलकम टू ऑल अ लवली लिसनर्स ट्यून टू आकाशवाणी FM गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। एंड मुकेश, एज यू सो राइटली सेड दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेंड आवर टाइम विद द पीपल हु वैल्यू अस, हु होल्ड अस एज इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन देयर लाइफ। सो सच इज

0: our relationship with our listeners too. Yeah. Our listeners are very, very important, very, very dear to us. And that's the reason why we try to make all our programs very informative and, of course, entertaining too.
1: Ji.
0: So, as is the promise and commitment with the anchors today and always, today's Art Survey is packed with news, Metro City updates, and of course, historical information. So let's begin with the news program, Mukesh, without much ado.
1: जी बिल्कुल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान आज मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को संबोधित किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा हितों को बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि विकास से ही विस्तार होगा. श्री मोदी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से कहा कि आपकी उपस्थिति साझा विकास का प्रतीक है. इस दौरान हमारी आर्थिक साझेदारी और मजबूत हुई है. उन्होंने कहा कि दोनों देशों को नए बाजार का लाभ मिला है. श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रही है. श्री मोदी आज ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे. दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है. प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय को गर्मजोशी से स्वागत के लिए आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया.
0: India is holding on to its crown as the world's fastest growing major economy, with the International Monetary Fund IMF projecting it to grow at 7% during the current calendar year. We have a report.
2: IMF's flagship biannual report, the World Economic Outlook Update, projected India's gross domestic product to moderate in the next calendar year to 6.4%. The report said the projected performance of Indian economy is supported by strong momentum in private consumption and services activity. India's growth projections are more than twice the global numbers, as the report gave a 3% projection for the world economy's growth this year. The report presented a relatively positive outlook for the world economy growth, as it is expected to rise 3.4% next year. China, which is the second fastest growing economy, was projected to grow by 4.6% this year and lose a half point, failing to 4.1% next year. The US ranked third with a projected growth of 2.3% this year and 2.2% next year. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में कल मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया. इसके अंतर्गत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क चिकित्सा उपचार मिलेगा. शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों की स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करने के लिए अपने वादे को पूरा किया है.
0: Center has approved the procurement of copra and totapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Union Agriculture and Farmers Welfare Ministry said this will ensure better price realization for producers and protect them from distressed sales caused by market fluctuations. We have a report on this from our correspondent.
3: The approval is based on the proposal submitted by Tamil Nadu. Under the approval, over 87,000 metric tons of copra will be procured in the state. The entire procurement will be undertaken at the minimum support price, MSP, under the price support scheme. The total MSP value of the approved procurement is over 1,000 crore rupees. Further, procurement of over 96,000 metric tons of Totapuri mangoes in Tamil Nadu during this year has received approval under the market intervention scheme. The procurement will be carried out under the scheme with the market intervention price fixed over 1,000 rupees per quintal. The intervention is aimed at ensuring that Totapuri mango growers receive fair and remunerative prices for their produce and are protected from having to sell at a loss due to sudden decline in market prices. The measure is expected to provide price stability, safeguard farmers' incomes, and ensure better returns for their produce. Ved Anupam, Saklayan Akhtar, Akashvani News, Delhi.
1: अमेरिका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हुर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिकी हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए थे. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ईरान ने फिर हमले किए तो अमेरिका इसका और कड़ा जवाब देगा.
0: And now let's take a peep in the world of sports. India's Arnav Paparkar created history by becoming the first Indian in 36 years to reach the boys' singles quarterfinals at the Wimbledon Juniors 2026.

0: The 18-year-old Papadkar defeated Japan's Ryo Tabata 6-2, 6-1 in just 52 minutes in the pre-quarterfinals. Earlier, he shocked world number 3 Caton Hans of the United States with a 6-2, 6-3 win after beating Great Britain's Joshua Craze 6-2, 6-2 in the opening round. He has not dropped a set so far in the tournament. Papadkar will next face either Jordan Lee of the United States in the quarterfinals at 5 p.m. today. Only 3 Indians have won the Wimbledon Juniors Boys Singles title: Ramanathan Krishnan in 1954, Ramesh Krishnan in 1979, and the last was Leander Paes in 1990. Papadkar will now join that elite list.
1: और आज सवेरे कार्यक्रम में वक्त हुआ है मेट्रो न्यूज का, तो सबसे पहले सरबजीत आप बताएं चेन्नई से क्या समाचार है आपके पास।
0: जी, द मद्रास हाई कोर्ट हैज डायरेक्टेड ऑल प्राइवेट स्कूल्स इन द स्टेट टू डिस्प्ले द फी स्ट्रक्चर फिक्स्ड बाय द फी डिटर्मिनेशन कमिटी एज वेल एज अदर फीस व्हिच हैव बीन अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी in the notice board and the website of the respective private schools 1 month before commencement of every academic year. Justice M. Dhandapani passed the order yesterday while disposing of a plea moved by the All India Private Educational Institutions Association challenging an order passed by the Tamil Nadu Information Commission. And Mukesh, what's the news from Mumbai?
1: जी हाँ, मुंबई के समाचारों में अपने श्रोताओं को बताएं कि इस वर्ष मुंबई में केवल 6 दिन में पूरे जुलाई महीने में होने वाली वर्षा के बराबर वर्षा हो चुकी है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 6 दिन में 882 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जबकि सांता क्रूज में भी 988 मिलीमीटर वर्षा हुई। कुल मिलाकर मुंबई की औसत वर्षा लगभग 42% हो चुकी है। इससे सामान्य जनजीवन अत्यधिक प्रभावित हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में नाली सफाई अनुबंधों में अनियमितताएं रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित धोखाधड़ी का पता लगाने की प्रणाली शुरू की है। इस प्रणाली ने अधिकारियों को ठेकेदारों के झूठे दावों, गलत बिलिंग और धोखाधड़ी वाली सूचनाओं की पहचान करने में सहायता की है। इसके फलस्वरूप 2025 में 12 करोड़ 50 लाख रुपए और 2026 में 9 करोड़ 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। सरकार ने कहा कि प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था ने मॉनसून से संबंधित कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और निगरानी में सुधार किया है। इसके अलावा महानगर गैस लिमिटेड ने डाक विभाग के साथ साझेदारी कर घर घर जाकर पीएनजी मीटर रीडिंग सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। इस पहल का परीक्षण शुरू में दक्षिण मुंबई में किया जाएगा। इस प्रायोगिक परियोजना के सफल होने पर पूरे मुंबई में इसे लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य बिलिंग दक्षता बढ़ाना, ग्राहक सेवा में सुधार करना और डाक विभाग के लिए आय का एक अतिरिक्त स्रोत सृजित करना है।
0: और चलिए देखते हैं व्हाट्स द न्यूज़ फ्रॉम बेंगलुरु। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर डी के शिवकुमार यस्टरडे चेयर्ड कैटलिस्ट कनेक्ट, अ स्ट्रेटेजिक कंसल्टेशन विद मोर देन 150 लीडर्स ऑफ ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर्स GCCs इन बेंगलुरु टू डिस्कस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टैलेंट डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ease of doing business and the next phase of the state's innovation-led growth. Ahead of the consultation, the Chief Minister visited the Bengaluru campus of Target in India and interacted with the company's leadership on its technology, AI and digital capabilities. Addressing the gathering, he reaffirmed the government's commitment to strengthening Karnataka's position as India's leading GCC destination by attracting 500 new GCCs, creating more than 3 lakh high-quality jobs and generating $50 billion economic output by 2029. Karnataka Deputy Chief Minister and Revenue Minister Dr. G. Parameshwara has directed officials to dispose of more than 2 lakh pending e-poti cases in the Kalaburagi Revenue Division within a fixed time frame. Chairing a review meeting in Kalaburagi, he instructed officials to prioritize pending cases in Vijayagada, Bidar and Koppal districts and clear them within 2 months. He also directed deputy commissioners to expedite their caste cases, creation of new revenue villages and khata registration for temple priorities, besides ensuring the removal of encroachments from temple lands.
1: और अब कोलकाता महानगर की खबरें अपने श्रोताओं को बता दें। जापान की मित्सुबिशी कंपनी की पश्चिम बंगाल में एक सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई स्थापित करने की योजना है। कोलकाता

0: कोलकाता में कल जापानी प्रतिनिधिमंडल और राज्य सरकार के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया। राज्य सरकार ने परियोजना के लिए दुर्गापुर और पानगढ़ में भूमि प्रस्तावित की है। उद्योग मंत्री तापस रॉय ने बताया कि कंपनी के प्रतिनिधि इस महीने के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण करेंगे, इसके बाद परियोजना पर अंतिम निर्णय होने की संभावना है। राज्य के उद्योग मंत्री तापस रॉय ने कहा कि सरकार का प्राथमिक लक्ष्य पश्चिम बंगाल को पूर्वी भारत में सबसे आकर्षक निवेश स्थल बनाना है। उन्होंने कहा कि जूट और चाय जैसे पारंपरिक क्षेत्रों के आधुनिकीकरण के साथ साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और वैश्विक क्षमता केंद्रों जैसे उच्च तकनीकी उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य की नई औद्योगिक नीति शीघ्र ही जारी की जाएगी।
1: Telangana Eagle Force Inspector P. Srinivas Rao said yesterday that eliminating the menace of drug abuse requires a coordinated approach involving law enforcement, educational institutions and public participation. Speaking at an integrated communication and outreach program on the Nasha Mukt Bharat Abhiyan at Dr. B. R. Ambedkar College in Hyderabad, Rao emphasized that the fight against substance abuse can only succeed through collective action. He highlighted that sustained enforcement and actionable public inputs via the toll-free helpline 1908 have significantly strengthened the state's efforts to dismantle drug trafficking networks, which deliberately target the nation's youth and students. According to Rao, the anti-drug campaign relies on three major pillars, that is, strict enforcement, widespread public awareness, and effective rehabilitation. Shruti Patil, Additional Director General of PIB and CBC, reiterated the Central Bureau of Communications' commitment to spreading awareness about the initiative. And what's the buzz from Delhi today, Mukesh?
0: जी हाँ, दिल्ली की खबरों में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का लगभग 80% कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य तेजी से जारी है। उन्होंने कहा कि अगले दो वर्ष में दिल्ली से मुंबई के नरीमन पॉइंट और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तक की यात्रा केवल 12 घंटे में पूरी की जा सकेगी। दिल्ली सरकार ने राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग नेटवर्क के बड़े विस्तार की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल नई ईवी नीति की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगले चार वर्ष में दिल्ली में ईवी चार्जिंग स्टेशन की संख्या मौजूदा लगभग 9,000 से बढ़कर 32,000 हो जाएगी। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राजधानी की स्वच्छता व्यवस्था और तीनों लैंडफिल साइटों पर चल रहे बायो माइनिंग कार्यों की प्रगति की रिपोर्ट सौंपी। महापौर ने बताया कि ओखला लैंडफिल पर अब तक लगभग 80 लाख मीट्रिक टन लेगेसी वेस्ट का सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा चुका है, जबकि लगभग 15 लाख मीट्रिक टन फ्रेश वेस्ट के वैज्ञानिक निस्तारण का कार्य तीव्र गति से जारी है। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज मेट्रो के चौथे चरण के अंतर्गत इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण कार्य का उद्घाटन करेंगे। यह समारोह सराय रोयला मेट्रो स्टेशन पर आयोजित किया जाएगा। 12 किलोमीटर से अधिक लंबा 10 स्टेशन का यह कॉरिडोर पश्चिम, मध्य और पुरानी दिल्ली को जोड़ेगा। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे मुकेश कुमार और सरबजीत कौर के साथ। और आज सवेरे में वक्त हुआ है मौसम का हाल जानने का। तो सरबजीत, सबसे पहले दिल्ली का मौसम बताएं अपने श्रोताओं को।
1: जी बिल्कुल,
0: दिल्ली का मौसम जो है पूरी तरह से भीगा हुआ है। रात भर कल वर्षा हुई और दिन में भी पूरे दिन वर्षा जारी रही और अभी भी हम आए हैं, अभी भी वर्षा जारी है। और इस वर्षा के कारण जो दिल्ली का तापमान है उसमें भारी गिरावट आई है
1: जी।
0: और आज का अधिकतम तापमान वो है 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।
1: Well, Chennai too is likely to witness a partly cloudy sky. The temperatures are expected to range between a minimum of 29 degrees, maximum of 38 degrees Celsius.
0: और कोलकाता की बात करें तो आसमान में बादल आमतौर पर छाए रहेंगे और गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
1: बेंगलुरु इज फोरकास्ट टू एक्सपीरियंस अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन, मिनिमम टेम्परेचर 21 डिग्रीज, मैक्सिमम मे गो अप टू 29 डिग्री सेल्सियस।
0: और मुंबई में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
1: सो ऑलमोस्ट रेन्स एवरीवेयर मुकेश, एंड हैदराबाद टू इज लाइकली टू सी अ जनरली

0: Cloudy sky with light rain or drizzle. Temperatures are expected to range from 24 degrees to 34 degrees Celsius.
1: और कार्यक्रम में वक्त हो चला है इतिहास के पन्नों को पलटने का और उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन का इतिहास बन गई. आज 9 जुलाई है और आज ही के दिन सबसे पहले आप बताएं.
0: 1789, 9 जुलाई, ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द नेशनल असेंबली रीनेम्ड इटसेल्फ द नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. 1810, on this day, the Kingdom of Holland was annexed by the Napoleon as a part of the First French Empire.
1: और वर्ष 2001 की अगर हम बात करें तो आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान सीमा पर दो चौकियां स्थापित करने की घोषणा की थी.
0: 1868, on this day, Francis L. Cardozo becomes the first African American cabinet member in South Carolina as Secretary of State. And in the year 1875, on this day, the Bombay Stock Exchange was established.
1: वर्ष 2002 में आज ही के दिन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी का नाम बदलकर अफ्रीकन यूनियन किया गया था.
0: 1877, on this day, the first ever Wimbledon Tennis Championship began. And on this day, in the year 1910, Walter Brookins flied a Wright biplane over Atlantic City. He became first to fly an airplane to an altitude of 1 mile or 6,175 feet.
1: और 2004 की बात करें तो आज ही के दिन एशियाई विकास बैंक ने आतंकवाद से लड़ने के लिए अपने 42 सदस्य देशों के लिए एक विशेष कोष बनाया था. 2007 में आज ही के दिन भारतीय मूल के अमरीकी वैज्ञानिक हिमांशु जैन को ग्लास साइंस के क्षेत्र में कार्य के लिए ऑटो स्कॉट रिसर्च पुरस्कार प्रदान किया गया. और 2008 की बात करें तो आज ही के दिन ईरान ने लंबी और मध्यम दूरी तक मारक क्षमता वाले 9 प्रक्षेपास्त्रों का परीक्षण किया. और अब याद कर लेते हैं उन महान हस्तियों को जिनकी आज पुण्यतिथि है. इस क्रम में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं भोपाल के सुप्रसिद्ध शायर शेरी भोपाली को. आज उनकी पुण्यतिथि है. शेरी भोपाली का असली नाम मोहम्मद असगर था. उनका जन्म आगरा में 1914 में हुआ था, लेकिन वो असल में भोपाल से ही ताल्लुक रखते थे. शेरी भोपाली ने शायरी में शेरी तखल्लुस का उपयोग शुरू किया था. वे मेल संदेलवी के शिष्य रहे और उन्होंने जकी वारसी का भी अपनी शायरी में अनुसरण किया. उन्होंने शायरी के हुनर को दिल्ली की आबो हवा की देन कहा था. उनकी एक शायरी की जो शायरी है उसके कुछ अंश अपने श्रोताओं को सुनाए. गजल है, जुस्तजुए दिल का ये अंजाम हो जाए कि मंजिल दूर हो और रास्ते में शाम हो जाए. वही नाला वही नगमा बस एक तफरीक लफ्जी है. कफस को मुंतशिर कर दो नशे मन नाम हो जाए. और तसद्दुक इस्मत कौनैन उस मजजूब उल्फत पर जो उनका गम छुपाए और खुद बदनाम हो जाए.
0: वेरी वेल सेड मुकेश. एंड सिंस यू नो यू हैव सेट द स्टेज, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पर्सनालिटी, द ग्रेट गुरुदत्त. टुडे इज गुरुदत्त बर्थ एनिवर्सरी. द लेजेंडरी film actor, director, producer, choreographer, writer, you know, so many genres, and he was such a versatile, creative artist. So before we talk any further about the great Gurudatt, let's hear this beautiful number.

0: भारतीय सिनेमा में फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता गुरदत्त ने बहुत अच्छे ऐसे काम किए हैं, बहुत कई ऐसी फिल्मों में काम किया है जो आज भी यादगार हैं। गुरदत्त का वास्तविक नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। गुरदत्त अपने आप में ही संपूर्ण कलाकार बनने की पूरी पात्रता रखते थे, तो क्यों ना उनका एक डायलॉग पहले सुन लिया जाए।
1: जी,
2: मैं वो विजय नहीं, वो तब कम अच्छा दोस्त। ये लोग मेरे दोस्त नहीं, ये सब दौलत के दोस्त। कल तक जो मुझे पहचानने से इनकार कर रहे थे, मुझे किसी इंसान से कोई शिकायत नहीं। मुझे शिकायत है समाज के उस ढांचे से जो इंसान

0: से उसकी इंसानियत छीन लेता है, मतलब के लिए अपने भाई को बेगाना बनाता है, दोस्त को दुश्मन बनाता है। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहां मुर्दों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले रौंदा जाता है।
1: एंड यू नो मुकेश, गुरुदत्त गेव हाईली सेलिब्रेटेड एंड क्लासिक प्रोडक्शंस लाइक प्यासा, कागज के फूल, चौदवी का चांद एंड साहिब बीबी और गुलाम। यू नो दीज आर जस्ट फ्यू फिल्म्स व्हिच आई हैव इन माय लिस्ट।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, और आपको पता होना चाहिए कि गुरुदत्त एक अच्छे नर्तक भी थे, क्योंकि उन्होंने अपने फिल्मी जीवन का आगाज किया था फिल्म प्रभात फिल्म्स में एक कोरियोग्राफर की हैसियत से। अभिनय कभी उनकी पहली पसंद नहीं रहा था, लेकिन उनके सरल, संवेदनशील और नैसर्गिक अभिनय का लोहा सभी मानते हैं। तो उनकी एक और फिल्म का गाना सुनते हैं।

0: और भारत के प्रख्यात शायर और लेखक सरदार अंजुम की आज पुण्यतिथि है। उन्हें भारत सरकार ने 2005 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। सरदार अंजुम हरियाणा के पंचकुला से हैं। उन्होंने 1991 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनको भारत और विदेश दोनों में कई साहित्य समाजों, सांस्कृतिक मंचों और रचनात्मक नींव द्वारा सम्मानित किया गया।
1: And Mukesh, today is a day when we are remembering many personalities with versatile skills. So another name in this list is the great Sanjeev Kumar. Today is Sanjeev Kumar's birth anniversary. A great man who acted in a variety of genres ranging from romantic drama to thriller. And before we go any further in this deliberation, we'll first hear this dialogue rendered by Sanjeev Kumar.
0: Ji.
2: 20 saal mein apne bade bhai ki yaad कभी नहीं आई, कभी भी मुड़कर ये नहीं देखा कि तुम्हारा बड़ा भाई तुम लोगों के बगैर किस तरह मर मर के जी रहा है। देखो उस जुर्म की सजा दे रहे हो जो उसने किया ही नहीं, जिसका खतावार वो नहीं।
1: And listeners,
0: संजीव कुमार का असली नाम हरिहर जेठालाल जरीवाला था। उनका जन्म सूरत गुजरात में एक पारंपरिक गुजराती परिवार में हुआ था और बचपन में उनका परिवार मुंबई चला गया जहां सिनेमा के प्रति उनका जुनून पनपा।
1: There was so much of melancholy and poignance in the dialogue which Sanjeev Kumar just rendered. Yes, what next are you are telling us about Sanjeev Kumar?
0: उन्होंने एक प्रतिष्ठित फिल्म संस्थान में दाखिला लिया मुंबई पहुंचने पर और जिसने भारतीय सिनेमा में उनकी यात्रा की शुरुआत की थी। अपार प्रतिभा के धनी वे उद्योग की सबसे बहुमुखी और सम्मानित अभिनेताओं में से एक बन गए। तो उनकी एक फिल्म का ये गाना सुनते हैं।
3: एक

करके दर्शकों को प्रभावित किया। उन्होंने हम हिंदुस्तानी जो कि 1960 में प्रदर्शित हुई थी उसमें एक छोटी सी भूमिका के साथ स्क्रीन पर अपनी शुरुआत की और 1965 की फिल्म निशान में अपनी पहली लीड हासिल की थी। तो क्यों ना उनका एक और गाना सुना जाए।

0: and some of the well-acclaimed movies of Sanjeev, Sholay, Arjun Pandit, Trishul, Khilona, Naya Din, Nayi Raat, Yeh Yeh Zindagi, Ram Tere Kitne Naam. Beautiful movies.
1: बिल्कुल, संजीव ने इंडियन नेशनल थिएटर के साथ मंच पर अपने करियर की शुरुआत की थी. 22 साल की उम्र में भी उन्होंने ए के हंगल द्वारा निर्देशित ऑल माई सन्स एंड डमरू जैसे बुजुर्ग पात्रों को चित्रित

और अब हम याद कर रहे हैं प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक के बालाचंद्र को। भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए वर्ष 2010 में उन्हें प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया और पुरस्कार फलस्वरूप उन्हें स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपए नकद प्रदान किए गए। दक्षिण भारत के इस फिल्मकार ने हिंदी फिल्म एक दूजे के लिए से उत्तर भारत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई, तो क्यों ना इस फिल्म का गाना सुना जाए।

और बालचंद्र में नवीन प्रतिभाओं को पहचानने की अद्भुत क्षमता थी। बालचंद्र को रजनीकांत, कमल हासन, प्रकाश राज और विवेक जैसे वर्तमान दौर के कई सितारों को फिल्मी दुनिया में लाने का श्रेय भी रहा। और अभी आपने जो गाना सुना था वो फिल्म रोजा का था, और अब सुनते हैं एक और गाना।

0: और घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही हैं कि आज का आज सवेरे कार्यक्रम यहीं पर समाप्त किया जाए। तो अनुमति दें मुकेश कुमार और सरबजीत कौर को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की, लेकिन आप सुनते रहें आकाशवाणी FM गोल्ड।
1: Yes, listeners, do stay tuned for Hindi News Bulletin followed by Morning News in English at 8:15 AM. Thank you for tuning in. Have a superb day. Namaskar.

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी।

0: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2026 में 7% की विकास दर रहने का अनुमान जताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक है और आवश्यक भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में रिकॉर्ड समय में संपन्न हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, एआई, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा है कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है।
2: तीसरा एनुअल लीडर्स समिट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस वर्ष और पिछले सालों में जो आपने देखा कि जो एक पूरे विश्व में एक हल्का सा तनाव है, चाहे युद्ध का है, जो डिस्प्यूट्स हैं, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस संदर्भ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारी रिलेशनशिप को उस क्षेत्र में जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि स्वीकृत खरीद का कुल MSP मूल्य 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। यह खरीद MIS के तहत की जाएगी, जिसमें बाजार हस्तक्षेप मूल्य 1,000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक निर्धारित किया गया है। अनुपम मिश्र के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती स्थित सचिवालय में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
3: इस योजना के तहत राज्य भर के शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। नियमित शिक्षकों के अलावा इस योजना से शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करने के अपने वायदे को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ये व्यापक सामाजिक सुरक्षा और बीमा कार्यक्रम देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए से ज्यादा मासिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। अमेरिका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमरीकी हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमरीका इसका और कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रात से ही बारिश हो रही है। दिन में भी शहर में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी

0: कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य में कल रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट पहले से ही जारी है। इन जिलों में कल रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 वर्षीय पापरकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रियो ताबाता को मात्र 52 मिनट में 6-2, 6-1 से हराया। पापरकर का अगला मुकाबला आज शाम 5 बजे क्वार्टर फाइनल में अमरीका के जॉर्डन ली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने ईरान अमेरिका युद्ध विराम खत्म होने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान और बारिश के चलते देश में प्रभावित जनजीवन के समाचारों को सुर्खियों में जगह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा का समाचार भी कई अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री का चित्र सबसे ऊपर छापा है। खबर को शीर्षक दिया है इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में मोदी ने की पूजा। वीर अर्जुन ने इस खबर को प्रधानमंत्री के इस बयान के साथ प्रकाशित किया है कि सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़ती है। देश बंधु की सुर्खी है इंडोनेशिया के सबसे बड़े शिव मंदिर में पहुंचे मोदी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय से स्वागत स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का चित्र भी कुछ अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने के समाचार को देश भर में भवन निर्माण संबंधी अनियमितताओं के मामले से जुड़ी स्थिति का विश्लेषण प्रकाशित किया है। पत्र का कहना है कि नियमों का उल्लंघन कर लोग 5 से 6 मंजिला भवन बना रहे हैं। स्थिति को सुधारने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ताकि ऐसी अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। लोक सत्य ने नौकरी पेशा पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी शीर्षक से पीएफ खाते में 8.25% की दर से ब्याज देने की सरकार की घोषणा को प्रकाशित किया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर रचा है इतिहास। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses India-Australia CEOs Forum in Melbourne, says it is natural and essential for India and Australia to move forward as trusted partners in a world marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. Prime Minister Modi to also hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Centre approves procurement of Khopra and Totapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Uttar Pradesh government launches cashless health scheme for teachers as well as non-teaching staff in the state. IMF projects India to remain world's fastest growing major economy with 7% growth this year. US launches new strikes on Iran after President Donald Trump said ceasefire is over. And India's Arnav Papadkar creates history by becoming first Indian in 36 years to reach boys singles quarterfinals at Wimbledon Juniors 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese participated in the India-Australia

0: Australia CEO Forum in Melbourne this morning. Both leaders also met the leading business leaders from India and Australia. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said the world is currently navigating a period marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. He said that in such times, it is both natural and essential for India and Australia to move forward as natural and trusted partners. The Prime Minister further said economic cooperation and trade agreement concluded in record time in 2022 has further strengthened the economic ties between the two countries.
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकार

0: एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
1: Prime Minister Modi also noted the complementarities between the Indian and Australian economies, underlining vast opportunities available in India across a number of sectors.
0: हमारी पार्टनरशिप केवल दोनों राजधानियों या कुछ शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें हमारे राज्यों, छोटे बड़े शहरों, विश्वविद्यालयों, उद्योगों, सभी के स्टेक होल्डर्स बनाना होगा। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेंथ, उसको हम उड़ीसा और गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के साथ जोड़ सकते हैं। क्वींसलैंड और टेस्मेनिया की क्लीन एनर्जी और एग्रीकल्चर एक्सपर्टीज, पंजाब और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रिन्यूअल कॉरिडोर्स और फूड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम को नई गति दे सकते हैं।
1: Mr. Modi invited Australian investors to take advantage of opportunities for long-term investments in the country and also welcomed the growing presence of Australian universities in India.
0: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
1: Following the CEO's forum, Prime Minister Modi also addressed the Economic Roadmap Business Event, a large gathering of over 200 CEOs and business leaders from both sides. Speaking about natural synergies between India and Australia, he highlighted that shared democratic values, a common vision for the Indo-Pacific, vibrant people-to-people ties and strong political understanding created fertile ground for the business partnership between the two countries to grow and prosper together.
0: लोकतांत्रिक मूल्यों और इंडो पैसिफिक साझा विजन के आधार पर हमारे बीच गहरा स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बना है। हम अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रयास में आप सभी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आज का ये संवाद नए आइडियाज, नई पार्टनरशिप और नए कमिटमेंट्स को जन्म देगा।
1: Now we go over to our Melbourne correspondent who is sharing more details on the Prime Minister's visit.
2: The India-Australia CEOs Forum marked a decisive shift from parallel diplomatic tracks to an integrated, future-proof economic engine. Prime Minister Modi signaled a new era of decentralized economic diplomacy, calling for direct state-to-state corridors that link Australia's raw resources directly with India's massive clean energy, chip manufacturing and digital infrastructure pipelines. Echoing this vision, Prime Minister Albanese mapped out massive capital commitments, anchored by Australian super's multi-billion dollar investments, unprecedented higher education partnerships and landmark industrial projects like the Perdaman plant. Together, both leaders made it clear that while policy sets the runway, it is a direct synergy of our corporate titans and the unstoppable aspiration of 1 million strong diaspora that will pilot this relationship to its $100 billion target. Suhas Ram, Akashvani News, Melbourne.
1: Moreover, Prime Minister Modi will hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne later today. Discussions between the two leaders are expected to focus on strengthening cooperation in trade, defence, critical technologies, education and people-to-people ties. Mr. Modi arrived in Melbourne yesterday evening on a three-day visit to Australia at the invitation of Australian Prime Minister. PM Modi arrived in Melbourne from Indonesia in the second leg of his three-nation tour. The Prime Minister thanked the Indian community in Melbourne for the warm welcome accorded to him, describing the reception as truly unforgettable. Braving that winter chill, members of the Indian diaspora gathered in large numbers outside the Prime Minister's hotel, greeting him with chants of Bharat Mata Ki Jai and Modi Modi. The welcome also featured cultural performances by local artists. The Prime Minister also praised the Australian India Orchestra for its rendition of Maa Tujhe Salaam, saying the performance reflected the role of music in strengthening people-to-people ties between the two countries.

0: करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: Where there's water, there's life. Come, let us adopt to rainwater harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct borewells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.
3: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
4: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को
5: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की।
2: हम भारत में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर मॉड्यूल्स और विंड मिल्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी और 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा। हमने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी का लक्ष्य रखा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया स्थिरता के स्वाभाविक और विश्वसनीय स्तंभों के रूप में एक साथ हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच संपन्न हुए व्यापार समझौते से आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
2: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है।
1: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी के ऐतिहासिक परिवर्तन का उल्लेख किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री अल्बनीज ने कहा कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर मजबूती से अग्रसर है।
3: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक साझेदारी को नई दिशा देने के लिए व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया है। मेलबर्न में आयोजित भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग अब पारंपरिक कूटनीतिक ढांचे से आगे बढ़कर भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश और औद्योगिक सहयोग लगातार विस्तार पा रहा है। मेलबर्न

0: सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्वेडर ने आज मेलबर्न में इसकी घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि निवेश भारत के विकास पथ पर दुनिया भर के विश्वास को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल वाराणसी में राज्य के शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का निशुल्क चिकित्सा उपचार मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2026 के दौरान इसके 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि दिल्ली की सभी मुख्य सड़कों पर जल भराव की स्थिति नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सभी संबंधित एजेंसियां अलर्ट पर हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिन में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्ष में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का चौथा मैच आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese participated in the India-Australia CEO Forum in Melbourne this morning. Both leaders also met the leading business leaders from India and Australia. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said, "The world is currently navigating a period marked by uncertainty, supply chain disruptions, and an energy crisis." He said that in such times, it is both natural and essential for India and Australia to move forward as natural and trusted partners. Following the CEO's forum, Prime Minister Modi also addressed the Economic Roadmap Business Event, a larger gathering of over 200 CEOs and business leaders from both sides.
3: लोकतांत्रिक मूल्यों और इंडो पैसिफिक साझा विजन के आधार पर हमारे बीच गहरा स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बना है। हम अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रयास में आप सभी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आज का ये संवाद नए आइडियाज, नई पार्टनरशिप और नए कमिटमेंट्स को जन्म देगा।
2: Prime Minister Modi will hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Discussions between the two leaders are expected to focus on strengthening cooperation in trade, defence, critical technologies, education and people-to-people ties. Mr. Modi arrived in Melbourne last evening on a three-day visit to Australia at the invitation of Australian Prime Minister. PM Modi arrived in Melbourne from Indonesia in the second leg of his three-nation tour. India welcomed the $500 million Australian dollar investment from Australian Super announced by their Chief Executive Officer Paul Schroeder this morning in Melbourne. In a social media post, Prime Minister Narendra Modi said that this is another glimpse of the global confidence in India's growth and reform trajectory. He added it also reflects the immense opportunities that India's dynamic economy offers to global investors. Centre has approved the procurement of copra and totapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Union

0: Agriculture and Farmers Welfare Ministry said this will ensure better price realization for producers and protect them from distressed sales caused by market fluctuations. Uttar Pradesh government has launched the cashless health scheme for teachers as well as non-teaching staff in the state. Chief Minister Yogi Adityanath launched the Chief Minister's Teachers Cashless Medical Scheme from Varanasi, which will offer medical coverage of up to 5 lakh rupees to more than 15 lakh teaching staff. US launched another round of airstrikes on Iran after President Donald Trump said Iran's latest attacks had effectively ended the ceasefire. President Donald Trump also accused Iran of attacking commercial ships in the Strait of Hormuz, said the latest US strikes were carried out in retaliation. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Bihar, East Rajasthan, Madhya Pradesh, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim and West Uttar Pradesh during the day. Meanwhile, moderate rainfall lashed several parts of the national capital this morning, bringing fresh weather and much-needed relief to residents. The waterlogging situation on all major roads in Delhi is under control. The Delhi Chief Minister's Office, CMO, said that all concerned agencies are on alert following the directions of Chief Minister Rekha Gupta. It said the Chief Minister has reviewed the situation with officials. The CMO said that the teams of the Delhi Jal Board, Public Works Department and the Municipal Corporation are on the ground and prepared to deal with any situation. India's Arnav Paparkar created history by becoming the first Indian in 36 years to reach the boys' singles quarter-finals at the Wimbledon Juniors 2026. The 18-year-old Paparkar defeated Japan's Rio in the pre-quarter-finals. He will next face either Jordan Lee of the United States in the quarter-finals today. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया वैश्विक अनिश्चितता आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया प्रधानमंत्री मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का आज विशाल और अंतिम विरोध प्रदर्शन सरकार को मांगे मनवाने के लिए 48 घंटे का समय दिया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संघर्ष विराम को समाप्त किए जाने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर 36 वर्षों में विंबलडन जूनियर्स 2026 में एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने और अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज मेलबर्न में उच्च स्तरीय भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में प्रवेश कर चुकी है उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब अमरीकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की उन्होंने वैश्विक अनिश्चितता आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया स्थिरता के स्वाभाविक विश्वसनीय स्तंभों के रूप में एक साथ खड़े हैं उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच संपन्न हुए व्यापार समझौते से आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है
2: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट

0: डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है।
1: उन्होंने भविष्य के लिए तैयार सीमाओं पर गहन वाणिज्यिक सहयोग का आह्वान किया। प्रमुख उद्योगों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत के अभूतपूर्व ढांचागत विस्तार के बारे में भी जानकारी दी।
0: भारत में पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड, रेलवे और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑस्ट्रेलिया के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अनेक संभावनाएं हैं। आज भारत में नेशनल हाईवेज लगभग 34 किलोमीटर प्रतिदिन की गति से बढ़ रहे हैं। हर दिन 8 किलोमीटर से अधिक रेलवे ट्रैक्स लगाए जा रहे हैं। यह स्केल, स्पीड और स्टेबिलिटी तीनों का संगम है।
1: श्री मोदी ने कहा कि उच्च तकनीकी क्षेत्र में 10 अरब अमरीकी डॉलर के सरकारी प्रोत्साहन कार्यक्रम के माध्यम से सेमीकंडक्टर, एआई क्वांटम कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में प्रगति संभव है।
0: एआई मिशन, क्वांटम मिशन और सेमीकंडक्टर प्रोग्राम के अंतर्गत भारत सरकार ने $10 बिलियन से ज्यादा का सपोर्ट दिया। हम डेटा सेंटर, एआई, क्वांटम, सेमीकंडक्टर और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मिलकर ग्लोबल सॉल्यूशंस तैयार कर सकते हैं।
1: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया भारत गठबंधन के ऐतिहासिक परिवर्तन का उल्लेख किया, जो समानांतर यात्राओं से एकीकृत भविष्य के लिए साझेदारी में परिवर्तित हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री अल्बनीज ने इस बात पर जोर दिया कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर मजबूती से अग्रसर है।
2: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक साझेदारी को नई दिशा देने के लिए व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया है। मेलबर्न में आयोजित भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग अब पारंपरिक कूटनीतिक ढांचे से आगे बढ़कर भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित हो रहा है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक संसाधनों को भारत की स्वच्छ ऊर्जा, सेमीकंडक्टर विनिर्माण और डिजिटल अवसंरचना से जोड़ने के लिए राज्य के बीच प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश और औद्योगिक सहयोग लगातार विस्तार पा रहा है। दोनों नेताओं ने नीतिगत सहयोग के साथ साथ उद्योग जगत की सक्रिय भागीदारी और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे 10 लाख से अधिक भारतीय मूल के लोगों की भूमिका, भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाने तथा द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब के लक्ष्य तक पहुंचाने पर बल दिया। सुहास राम की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं फरहत नाज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक अशांति के बीच विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रमुख गुट संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAC ने आज एक बड़े और आखिरी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। यह आह्वान उनकी मांगे मानने के लिए 48 घंटे की समय सीमा का पालन करने में पाकिस्तान के विफल रहने के बाद किया गया है। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमरीकी हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए थे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमरीका इसका और कड़ा जवाब देगा।

0: खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी मुनीश, खेल खबरों में सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 10 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड श्रृंखला में फिलहाल 2-0 से आगे है और श्रृंखला में बने रहने के लिए भारत को हर हाल में ये मैच जीतना ही होगा। और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स टेनिस में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 वर्षीय पापरकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रयो ताबाता को मात्र 52 मिनट में 6-2, 6-1 से हराया। इससे पहले उन्होंने पहले दौर में ब्रिटेन और अगले दौर में अमरीकी खिलाड़ी को हराया था। उन्होंने इस टूर्नामेंट में अभी तक एक भी सेट नहीं गवाया है। पापरकर का अगला मुकाबला आज शाम 5 बजे क्वार्टर फाइनल में अमरीका के जॉर्डन ली से होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की, तो कन्याकुमारी के 17 वर्षीय अश्वथ एस पुणे इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर राउंड रॉबिन

0: टूर्नामेंट में अभी तक एक भी सेट नहीं गवाया है। पापरकर का अगला मुकाबला आज शाम 5 बजे क्वार्टर फाइनल में अमरीका के जॉर्डन ली से होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की, तो कन्याकुमारी के 17 वर्षीय अश्वथ एस पुणे इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर राउंड रॉबिन में अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल करते हुए भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अंतिम दौर में अश्वथ ने काले मोहरों से खेलते हुए अमेरिका के कन्नन वैद्यनाथन को हराकर ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने 9 राउंड में 7 अंक प्राप्त करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है। जी मुनीश, तो ये थी आज की खेल जगत से जुड़ी खबरें।
1: शुक्रिया मुकेश। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर प्रदर्शनकारियों का आज विशाल और अंतिम विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संघर्ष विराम को समाप्त किए जाने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए। और भारत के अर्णव पापरकर 36 वर्षों में विंबलडन जूनियर्स 2026 में एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses India-Australia CEOs Forum in Melbourne, pitches for stronger India-Australia ties amid global uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. Prime Minister Modi to also hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir call for grand and final protest today after Islamabad fails to meet 48-hour deadline. US launches new strikes on Iran as President Donald Trump declares ceasefire over. And India's Arnav Paparkar becomes first Indian in 36 years to reach boys singles quarterfinal at Wimbledon Juniors 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese participated in the India-Australia CEO Forum in Melbourne this morning. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said the world is currently navigating a period marked by uncertainty, supply chain disruptions and an energy crisis. He said that in such times, it is both natural and essential for India and Australia to move forward as natural and trusted partners. The Prime Minister further said economic cooperation and trade agreement concluded in record time in 2022 has further strengthened the economic ties between the two countries.
3: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
2: Following the CEO's forum, Prime Minister Modi also addressed the Economic Roadmap Business Event, a larger gathering of over 200 CEOs and business leaders from both sides.
3: लोकतांत्रिक मूल्यों और इंडो पैसिफिक साझा विजन के आधार पर हमारे बीच गहरा स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बना है। हम अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रयास में आप सभी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आज का ये संवाद नए आइडियाज, नई पार्टनरशिप और नए कमिटमेंट्स को जन्म देगा।
2: Now we go over to our Melbourne correspondent who's sharing more details on the Prime Minister's visit.
4: The India-Australia CEOs Forum marked a decisive shift from parallel diplomatic tracks to an integrated, future-proof economic engine. Prime Minister Modi signaled a new era of decentralized economic diplomacy, calling for direct state-to-state corridors that link Australia's raw resources directly with India's massive clean energy, chip manufacturing, and digital infrastructure pipelines. Echoing this vision,

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: சுகமான ராகங்களில் அடுத்த பாடல் பூவே பூச்சோட வா திரைப்படத்திற்காக சித்ரா பாடியுள்ள பாடல்.

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.
2: சுகமான ராகங்களில் தொடர்ந்து உதயகீதம் திரைப்படத்திற்காக எஸ் பி பாலசுப்ரமணியம் எஸ் ஜானகி பாடியுள்ள பாடல்.

0: இனிய பாடல்களோடு உலா வந்தது சுகமான ராகங்கள். மீண்டும் சுகமான ராகங்கள் நாளை காலை 10:30 ஒலிபரப்பாகும். தொடர்வது ஹிந்தியில் செய்தி அறிக்கை, அதனைத் தொடர்ந்து ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கை. டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज आज तीसरे वार्षिक नेता शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। विक्टोरिया स्थित गवर्नमेंट हाउस में आयोजित इस सम्मेलन में दोनों नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नए बाजार का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की समानताएं निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं।
2: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ने पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है और आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े।

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने आज मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्ययोजना कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्ययोजना प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया स्थिरता के स्वाभाविक और विश्वसनीय स्तंभों के रूप में एक साथ हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच संपन्न हुए व्यापार समझौते से आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी के ऐतिहासिक परिवर्तन का उल्लेख किया। श्री अल्बनीज ने कहा कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर मजबूती से अग्रसर है। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल शोडर ने इसकी घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि निवेश भारत के विकास पथ पर दुनिया भर के विश्वास को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बुधवार को कठुआ जिले में एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया और वहां से दो हथगोले बरामद किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के बिलावर क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में स्थित इस ठिकाने का पता ओवरग्राउंड वर्कर हाजी लतीफ के से चला। रबागर निवासी लतीफ को 2 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। उस पर पिछले कई वर्षों से सीमा पार से एक दर्जन से अधिक आतंकवादियों की घुसपैठ में मदद करने का आरोप है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसके 7% के वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि दिल्ली की सभी मुख्य सड़कों पर जलभराव की स्थिति नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सभी संबंधित एजेंसियां अलर्ट पर हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 10 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: Where there's water, there's life. Come, let us adopt to rainwater harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct borewells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.
3: எஃப்எம் கோல்ட் வழங்கும் திரைக்கானத்தில் தொடர்ந்து எதிர்நீச்சல் திரைப்படத்திற்காக டி எம் சவுந்தரராஜன், பி சுசீலா பாடியுள்ள பாடல்.
4: என்ன நீங்க சமத்தா, நீங்க அசடா? சமத்தா இருந்தா கொடுத்தேளா, அசடா இருந்தா பருப்பேளா?
5: ஏண்டி புதுசா கேக்குற என்ன?

0: மெலிசை பாடல்கள் கேட்டீர்கள். மீண்டும் மெலிசை பாடல்களை நாளை மதியம் 12:50 கேட்கலாம். தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே கனகலதா. भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोहराया है कि बदलते जटिल रणनीतिक माहौल में रक्षा और सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच साझेदारी का प्रमुख आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। ये दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। घोषणा पत्र में दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप के माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। मेलबर्न में संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण में समुद्री सहयोग को रेखांकित किया।
2: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टीकल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
1: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक आज महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू होगी। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें परिवहन क्षेत्र और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के तहत आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों से आने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के शुल्क को पूरी तरह से माफ करने की मंजूरी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने और पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक के तटीय भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगेय पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी दिन में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भाग, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना।

0: की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत वयस्कों के लिए निर्धारित साक्षरता मानकों को प्राप्त कर पूर्णतः साक्षर राज्य बना। और वियतनाम में होने वाले पिकलबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारतीय दल की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनीज ने संयुक्त वक्तव्य दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी बदलाव का स्वागत किया और क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक रूपरेखाओं को अंतिम रूप दिया।
1: यह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं। पारंपरिक व्यापार से हाईटेक डिफेंस कॉरिडोर की ओर बढ़ने, महत्वाकांक्षी सीका समझौते में तेजी लाने और ऐतिहासिक परमाणु समझौते के अंतर्गत लंबे समय के लिए यूरेनियम निर्यात शुरू करने जैसी पहलों से दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया गया है। जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि 10 लाख लोगों का भारतीय प्रवासी समुदाय इस साझेदारी की असली धड़कन है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के विकास की गति को क्रिकेट की तरह बताया।
2: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन T20 जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी।
1: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी भविष्य के लिए निर्मित एक सुदृढ़ और स्थायी संबंध है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। शिखर वार्ता की प्रमुख उपलब्धियों में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को नई गति देना शामिल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन साझेदारी को क्रियान्वित किया गया और महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर की स्थापना की गई।
2: हमने सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं।
0: हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत रूप दिया गया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप का शुभारंभ हुआ।
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार

0: पूर्वक चर्चा की।
1: शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के नए शाखा परिसर बंगलुरु और गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।
2: We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries.
3: हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहें। आज हमने हर पहलू पर

0: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में आज नागपुर में ब्रिक्स 2026 के तहत तीसरे ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई। कार्यकारी समूह की इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने गतिशीलता, शहरी बुनियादी ढांचा और सतत विकास जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत ने आज गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल के लिए एक अहम राष्ट्रीय पहल शुरू करके अपनी समुद्री विकास में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उड़ीसा के एक दिन के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दूर के समुद्रों में काम करने वाली भारतीय झंडे वाली मछली पकड़ने वाली नावों के लिए अनुमति पत्र जारी करने की राष्ट्रीय प्रक्रिया की शुरुआत की। इससे जिम्मेदारी से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों को संरक्षण के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार होगा। उन्होंने उड़ीसा डीप सी फिशिंग मिशन डॉक्यूमेंट भी जारी किया जो राज्य में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को इकोसिस्टम को मजबूत करने और ब्लू इकोनॉमी समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक योजना है। उपराष्ट्रपति ने युवा भारतीयों से मछली पालन को वैश्विक मौके वाला एक आधुनिक विज्ञान आधारित पेशे के तौर पर अपनाने का आग्रह किया।
2: May this historic initiative bring prosperity to every coastal family and contribute significantly to the realization of Viksit Bharat by 2047.
1: Prakash Das, Akashvani Samachar, Bhubaneswar.
0: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना तथा कानून प्रवर्तन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों की पहचान कर देश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को हिमाचल प्रदेश के केलोंग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि ये सेंटर पूरे भारत के हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च को मजबूत करेगा। कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के तहत सरकार ने अब तक देश भर में किसानों को 9,404 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 22 लाख कृषि मशीनें वितरित करने में सहायता प्रदान की है। ये मिशन वर्ष 2014-15 में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे लाइन की मरम्मत के काम की समीक्षा की। भूस्खलन भीषण था और रेलवे लाइन के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी भारी नुकसान हुआ था। मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे की टीमें समन्वय से काम कर रही हैं। नीति आयोग ने उभरते क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की। इस बैठक में सरकार, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति के बाद राज्यपाल ने 8 जुलाई 2026 को इस घोषणा को मंजूरी दी। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में

0: सक्रिय हो गया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी ये आगे बढ़ चुका है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से तेज बारिश जारी है। दिल्ली वासियों की सुबह मूसलाधार बारिश और आंधी के साथ शुरू हुई। बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हो गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था।
1: अगर हम आने वाले दिनों की बात करें, सबसे पहले एनसीआर दिल्ली की बात करें, तो एनसीआर दिल्ली के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट, हम अनुमान लगा रहे हैं कि जहां आज मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, इसके अलावा कल ये रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, परसों हल्का फुल्का रेनफॉल होने का अनुमान है। वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट है, वहाँ हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जगहों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय जिलों के कुछ राष्ट्रीय मार्गों, राज्य राजमार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। बंद सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन व पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने संबंधित विभागों को किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 24 घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का गंभीरता से पालन करने की भी अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: केरल के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश की तीव्रता कम हो गई है। उत्तरी केरल के 5 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले कल रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट पर थे। वायनाड में 5 से 15 मिलीमीटर तक मध्यम बारिश दर्ज की गई। यहां मंगलवार को भूस्खलन हुआ था। भारतीय पिकलबॉल संघ ने 2026 पिकलबॉल विश्व कप के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। ये दल एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद चुना गया है। 30 अगस्त से 6 सितंबर तक वियतनाम के दानांग में आयोजित होने वाले पिकलबॉल विश्व कप में पेशेवर वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पिकलबॉल जगत में एक जाना पहचाना नाम हर्ष मेहता दल की कप्तानी करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 565 अंक चढ़कर 77,069 पर और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,050 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: திரைகானம் நிகழ்ச்சியில் அடுத்த பாடல் வியட்நாம் வீடு திரைப்படத்திலிருந்து டி எம் சவுந்தரராஜன் பி சுசீலாவின் குரலில்.

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt to rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.
2: 3:35. திரைகாணம் நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக ஒலிக்க இருக்கும் பாடல் புதிய பறவை திரைப்படத்திலிருந்து பி. சுசீலாவின் குரலில்.

0: ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கை.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பிரியங்கா அரோடா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। देश की आकांक्षाओं पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत अधिक विकास और अधिक उपलब्धियां हासिल करने में विश्वास रखता है। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में इस समय एक भव्य सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: साथियों, भारत और ऑस्ट्रेलिया जो कुछ भी करते हैं वो हम दोनों देशों के लिए भी शुभ होता है। इसका एक बड़ा उदाहरण भारत ऑस्ट्रेलिया ट्रेड एग्रीमेंट है। आपने वो शेर सुना होगा, आपको तो याद भी होगा, मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए और व्यापक युग में प्रवेश कर चुके हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे से जुड़े ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।
3: We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries.
4: हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहे हैं। आज हमने हर पहलू पर चर्चा की। नए और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए एक महत्व

0: महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया। उन्होंने समुद्री अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय समृद्धि का परिवर्तनकारी इंजन बताते हुए युवाओं से आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित मत्स्य पालन और समुद्री व्यवसायों को विकसित भारत की आधारशिला के रूप में अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और नए भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मॉनसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ चुका है। दिल्ली में बारिश के कारण कई स्थानों पर जल भराव हो गया है, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए हर हाल में आज का मैच जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi has said that the 21st century India is working towards the goal of becoming a developed nation. Addressing a community event in Melbourne today, Mr. Modi said, "Today's India believes in aspiring higher and achieving more." Describing his current visit to Australia as a hat-trick in 12 years, he said it reflects the growing strength of India-Australia ties.
2: मैं जब साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था तो 28 साल के बाद भारत का कोई पीएम यहां पहुंचा था। तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहां आया हूं, यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है।
1: We now take you live to the Prime Minister Modi's address.
2: आप ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों को भी, आपके स्कूल में पढ़ने वाले साथियों को, कॉलेज में पढ़ने वाले साथियों को, उनको भी इस कंपटीशन में जरूर जोड़े करेंगे भूल गए करेंगे साथियों, आप सभी ने भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को मजबूत बनाने में बहुत मेहनत की है, बहुत योगदान दिया है, लेकिन आपका काम यहां खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यहां से आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई है। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप का एक अलग ही फेज शुरू हो रहा है, इसलिए आप ऐसे ही भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को अपने जोश से भरते रहिए, चौके छक्के मारते रहिए।
1: Speaking on the occasion, Australian Prime Minister Anthony Albanese said the enthusiasm at the event reflected the strength of the Australia-India partnership and the growing warmth in bilateral relations. Earlier in the day, Prime Minister Modi and his Australian counterpart participated in the third Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne, during which they held delegation-level talks aimed at strengthening bilateral ties. To secure peace and stability across the Indo-Pacific, the two leaders signed a landmark joint declaration on defense and security cooperation, institutionalized an annual defense ministers' dialogue, and launched a unified maritime security collaboration roadmap. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said, India and Australia have taken a major step forward in the field of nuclear energy by signing a significant agreement that will enable the supply of uranium from Australia to India. He said strategic technology and resource security also reached new heights with the operationalization of the Australia-India partnership on cyber critical technologies and supply chains and a dedicated critical minerals corridor.

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: Where there's water, there's life. Come, let us adopt to rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.
3: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: University NSU Imphal, under the Ministry of Youth Affairs and Sports, has invited applications for various teaching and non-teaching posts. The vacancies include Professor, Associate Professor and Assistant Professor in Physical Education, Sports Medicine and Sports Coaching, Athletics. Non-teaching vacancies include Deputy Controller of Examination, Section Officer, Assistant Section Officer, Accountant, Assistant Librarian, Private Secretary, Library Assistant, Physiotherapist and Nursing Attendant. Eligible candidates must submit their applications along with supporting documents by 31st July 2026 to the Registrar, National Sports University, Imphal. Submission of the hard copy is mandatory, even if the application is sent by email. Detailed eligibility criteria and application forms available at the website, that is at www.nsu.ac.in. I repeat the website, it is www.nsu.ac.in. The ICAR, National Bureau of Plant Genetic Resources, New Delhi, has invited eligible candidates to attend a walk-in interview for one project assistant under a Department of Biotechnology, DBT-funded project on wheat titled Germplasm Characterization and Trait Discovery in Wheat Using Genomics, Approaches and Its Integration for Improving Climate Resilience, Productivity and Nutritional Quality. The project is valid up to 28th February 2027. The selected candidates will receive 20,000 rupees plus 27% of HRA with experience-based increments as per project norms. The walk-in interview will be held on 28th July 2026 at Division of Genomics Resources, Room G206, ICAR-NBPGR Pusa Campus, New Delhi. The upper age limit is 50 years, with relaxations for reserved categories as per government rules. Rail coach factory Kapurthala has invited applications from eligible Indian citizens for recruitment against the sports quota for the year 2026-27. The recruitment includes one post in level 4-5 and seven posts in level 2. The last date for submission of applications is 14th July 2026. Detailed eligibility criteria, sports disciplines and application procedure is available on the RCF website. For details, do look up www.rcf.indianrailways.gov.in under the Staff Corner Recruitment section. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे आमंत्रित कर रहा है सांस्कृतिक प्रतिभा क्षेत्र से दो पदों को भरने के लिए आवेदन। एक पद सैक्सोफोन वादक का है और एक अन्य पद पश्चिमी शास्त्रीय पियानो वादक का है। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष के लिए सामान्य वर्ग के लिए होनी चाहिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 18 से 33 वर्ष, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवार 18 से 35 वर्ष के बीच की आयु वर्ग के होने चाहिए। वेतनमान, योग्यता तथा अन्य नियम और शर्तों की जानकारी के लिए देखिए आधिकारिक वेबसाइट www.nfr.indianrailways.gov.in। अंतर विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। वैज्ञानिक सी, कनिष्ठ अभियंता सी और पुस्तकालय सहायक सी पदों के लिए 5 रिक्तियां उपलब्ध हैं। कनिष्ठ अभियंता के लिए 2 तथा पुस्तकालय सहायक के लिए 1। इन पदों से संबंधित पूरी जानकारी विस्तार से आप प्राप्त कर सकते हैं इस वेबसाइट पर www.iuac.res.in/vacancies। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए

0: आवेदन सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, दो रिक्तियां लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर, एक रिक्ति स्टेनोग्राफर ग्रेड वन, तीन रिक्तियां जूनियर लैब असिस्टेंट एक रिक्ति तथा इलेक्ट्रीशियन एक रिक्ति। केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। अतिरिक्त रजिस्ट्रार कुल पद दो, संयुक्त रजिस्ट्रार पद पांच, उप रजिस्ट्रार दो पद, सहायक रजिस्ट्रार एक पद तथा वरिष्ठ सहकारी अधिकारी दो पद। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट www.cooperation.gov.in। भारतीय थल सेना आमंत्रित कर रही है अपने इन कोर्सों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन। 68वां अल्प सेवा कमीशन तकनीकी कोर्स महिला, 68वां अल्प सेवा कमीशन तकनीकी कोर्स पुरुष, अल्पकालिक सेवा कमीशन कोर्स महिला के लिए 8 जुलाई से 6 अगस्त के बीच और अल्पकालिक सेवा कमीशन तकनीकी कोर्स पुरुष के लिए 9 जुलाई से 7 अगस्त 2026 के बीच आवेदन किया जा सकता है। विस्तृत नोटिफिकेशन और जानकारी के लिए देखिए भारतीय सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in। प्रवर्तन निदेशालय आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। सहायक प्रवर्तन अधिकारी, सहायक उच्च श्रेणी लिपिक तथा स्टाफ कार चालक ग्रेड दो। पात्रता संबंधी शर्तों, योग्यता आदि के ब्यौरे के लिए देखिए प्रवर्तन निदेशालय की वेबसाइट www.enforcementdirectorate.gov.in। इस वेबसाइट से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं अथवा देखिए 4 से 10 जुलाई 2026 का रोजगार समाचार पत्र। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी गोल्ड पर एक सुहानी शाम में स्वागत कर रहे हैं आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं ताज़ा तरीन खबरें और वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। परिक्रमा के इस अंक में मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी नमस्कार।
2: Hello, Sir Firozi. Hello and a very warm welcome to all our listeners tuned into Parikrama on 100.1 FM Gold. I am Abhishek Mukhopadhyay, and with me today is my co-host Sir Firozi. Well, listeners, the 2026 FIFA World Cup is currently in the quarterfinal stage, where top eight teams are fighting to reach the semifinals. The tournament is entering its final stretch with the grand finale scheduled for July 19th. Now let's talk about three reasons why you should keep watching this World Cup. Firstly, you get to watch the absolute best players in the world battle it out. Legends like Lionel Messi and Kylian Mbappe are scoring amazing goals and racing for the top scorer award. Secondly, this year has been full of shocks. Heavyweight teams have been knocked out by the underdogs, making every match unpredictable and exciting to follow. And lastly, as the games get closer to the final trophy, the pressure builds. This means you will see intense matches, dramatic comebacks, and nail-biting penalty shootouts. So keep watching and enjoying the FIFA World Cup 2026. And we begin our program with the news headlines at this hour.
1: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई।
2: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होल्ड्स एनुअल समिट विद हिज ऑस्ट्रेलियन काउंटरपार्ट एंटनी एल्बनीज़ी इन मेलबर्न, सेज बायलैटरल रिलेशनशिप एंटर्ड एन एक्सपेंसिव एरा

0: एंकर्ड इन डीप म्यूचुअल ट्रस्ट।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया।
0: मॉनसून कवर्स एंटायर कंट्री, इनसेसेंट रेन इफेक्ट्स नॉर्मल लाइफ इन द नेशनल कैपिटल रीजन।
1: उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत वयस्कों के लिए निर्धारित साक्षरता मानकों को प्राप्त कर पूर्णतः साक्षर राज्य बना।
0: And Indian contingent announced for the Pickle World Cup 2026 to be held in Vietnam. And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about India-Australia cultural relationship. Well, Sarfarozi, today we are traveling 14,000 kilometers across the Indian Ocean to a friendship that's rewriting the map of global partnerships. Well, I'm talking about Australia and India. And for decades, this relationship was summed up in three words: cricket, curry and Commonwealth. Catchy, yes. But today, that old formula barely scratches the surface. So sit back and let's unpack a bond that's become one of the most dynamic cultural stories of our time. Prime Minister Modi and his counterpart Albanese addressed the high-profile India-Australia CEO Forum and Economic Roadmap Business Reception in Melbourne today. And addressing the business reception, Prime Minister Modi said, "The India-Australia partnership has entered a transformative high-tech era." He outlined a visionary roadmap to accelerate bilateral trade towards its monumental $100 billion target by 2030, emphasizing a structural transition to high-value, future-ready commerce.
1: और अभिषेक, साथ ही प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी बल दिया कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटों के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया स्थिरता के स्वाभाविक और भरोसेमंद आधार के तौर पर एक साथ जुड़े हैं। श्री मोदी ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और 2070 तक नेट जीरो एमिशन हासिल करने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य और ऑस्ट्रेलिया के विशाल यूरेनियम भंडार के सहयोग से 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर क्षमता हासिल करने के लक्ष्य वाले भारत के नए ओपन प्राइवेट न्यूक्लियर सेक्टर का भी उल्लेख किया।
0: एंड सरफरोजी, असाइड ऑफ दिस इकोनॉमिक इंटरेस्ट, लेट्स आल्सो टॉक अबाउट कल्चर। Let us talk about the diaspora that changed a nation. Let's start with the people, because at the heart of the story is a migration wave like no other. The Indian-born community is now Australia's largest overseas-born population, having overtaken even the traditional British migrant community. Think about that for a moment. In a country famously built on Anglo-Celtic roots, it is now Indian voices, Indian festivals and Indian flavors reshaping the everyday rhythm of Australian life.
1: बिल्कुल अभिषेक, और ये बात सिडनी के हैरिस पार्क में बहुत ही साफ तौर पर दिखाई देती है। एक ऐसा इलाका जहां भारतीय रेस्टोरेंट, दुकानें और स्ट्रीट फूड की खुशबू इतनी बसी हुई है कि स्थानीय काउंसिल ने इसे आधिकारिक तौर पर लिटिल इंडिया इलाका माना है। सोचिए, आप सिडनी की किसी सड़क पर चल रहे हैं और आपको पाई बेचने वाली बेकरी के बराबर में बने कैफे से भारतीय संगीत सुनाई देता है, और यही है आधुनिक ऑस्ट्रेलिया। और इस तरह का गहरा जुड़ाव अभिषेक अचानक नहीं बनता, बल्कि इसे धीरे धीरे बनाया और आगे बढ़ाया जाता है।
0: Absolutely, sir. And that's where government institutions step in. The Centre for Australia-India Relations plays a quiet but a powerful role, acting as a bridge builder for business, education and cultural ties between the two nations. And backing it up financially is the Maitri Grants Program, Maitri fittingly meaning friendship in Sanskrit.
1: और इस पहल में आर्ट एग्जीबिशन और रिसर्च में सहयोग से लेकर कम्युनिटी फेस्टिवल तक बहुत कुछ शामिल है। ऐसी पहलों पर सिर्फ बोर्ड रूम में साइन नहीं किए जाते, बल्कि ये पहलें स्टेज पर परफॉर्म की जाती हैं, कैनवस पर पेंट की जाती हैं।
0: And speaking of stages, this is where the story gets truly beautiful. Picture this: a deep resonant hum of the Australian Aboriginal didgeridoo, an instrument that is echoed across the continent for tens of thousands of years, blending in real time with the intricate rhythmic heartbeat of the Indian tabla. And these aren't just performances, they're artistic conversations between two of the world's oldest living cultures.
1: इसके साथ ही राजनयिक यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलियाई मंचों पर होने वाले कथक नृत्य की प्रस्तुतियां भी सुंदर और भावुक करने वाली होती हैं। वहीं फर्स्ट नेशंस की पवित्र वस्तुएं और भारत की ऐतिहासिक धरोहरें भी, जो कभी अपनी जगह से दूर हो गई थी, अब वापस अपने घर लौट रही हैं। और ये इस बात का संकेत है कि दो देश जिन्हें अपनी प्राचीन विरासत पर गर्व है, वो इतिहास की अपनी ही चीजों को वापस पाने में एक

0: आज शेरी भोपाली की पुण्यतिथि है। भोपाल के सुप्रसिद्ध शायर ये रहे हैं। इनका नाम, असली नाम मोहम्मद असगर खान था। इनका जन्म हुआ 1914 में आगरा में, पर ये असल में भोपाल से ताल्लुक़ रखते थे। शेरी भोपाली ने शायरी में शेरी तखल्लुस उपयोग करना शुरू किया। ये मेल संदेलवी के शिष्य रहे और साथ ही ज़की वारसी का भी इन्होंने अपनी शायरी में अनुसरण किया। इन्होंने शायरी के हुनर को दिल्ली की आबोहवा की देन बताया था।
1: Yes, and Tom Hanks celebrates his birthday today. He's one of the most successful and beloved American actors and filmmakers in Hollywood history, widely celebrated for his everyman persona. He's one of only two actors to win the Academy Award for Best Actor in consecutive years, winning for Philadelphia 1993 and Forrest Gump 1994. And over his four-decade career, his movies have grossed billions worldwide. He has received prestigious honors, including the Presidential Medal of Freedom and the AFI Life Achievement Award.
0: आज ही पुण्यतिथि है सरदार अंजुम की। ये भारत के प्रख्यात शायर और लेखक थे। इन्हें भारत सरकार ने 2005 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया। इससे पहले 1991 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें भारत और विदेश दोनों में कई साहित्यिक समाजों, सांस्कृतिक मंचों और रचनात्मक नींव द्वारा सम्मानित किया गया है। साल 2000 में पूर्व प्रथम महिला हिलेरी क्लिंटन ने न्यूयॉर्क के अंतर्राष्ट्रीय शांति फाउंडेशन की ओर से सरदार अंजुम को द मिलेनियम पीस अवार्ड प्रदान किया था। इसके अलावा पंजाब के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब ने 23 सितंबर 2001 को सरदार अंजुम को साहित्य में उनके योगदान के लिए पंजाब रत्न पुरस्कार प्रदान किया था। सरदार अंजुम को उनके साहित्यिक कार्यों और गतिविधियों के लिए कुल मिलाकर 19 राज्य पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।
1: Yes, and Jack White, born John Anthony Gillis,

0: And we are also remembering Guru Dutt, who was born on this day in 1925. He was a visionary Indian filmmaker, actor and producer. Hailed as a master auteur of Bollywood's golden age, he is celebrated for pioneering poetic, socially conscious cinema. His masterpieces such as Pyaasa in 1957 and Kagaz Ke Phool in 1959 remain globally renowned for the visual artistry and haunting exploration of artistic suffering in a commercialized world. Let's listen into a dialogue from one of his hit movies.
1: मुझे शिकायत है समाज के उस ढांचे से जो इंसान से उसके इंसानियत छीन लेता है, मतलब के लिए अपने भाई को बेगाना बनाता है, दोस्त को दुश्मन बनाता है। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहां मुर्दों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले रौंदा जाता है, जहां किसी के दुख दर्द पे तो आंसू बहाना पुस्तली समझा जाता है, चुप के मिलना है कमजोरी समझा जाता है। ऐसे माहौल में मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी, मीना, कभी शांति नहीं मिलेगी।
2: गुरु दत्त का वास्तविक नाम था वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। इन्होंने अपने आप में एक संपूर्ण कलाकार बनने की पूरी पात्रता रखी। ये विश्व स्तरीय फिल्म निर्माता और निर्देशक थे और साथ ही इनकी साहित्यिक रुचि और संगीत की समझ की झलक भी हमें इनकी सभी फिल्मों में दिखती है। इसके अलावा गुरु दत्त एक अच्छे नर्तक भी थे। उन्होंने अपने फिल्मी जीवन का आगाज किया था प्रभात फिल्म से एक कोरियोग्राफर के तौर पर। अभिनय कभी इनकी पहली पसंद नहीं रहा, मगर उनके सरल, संवेदनशील और नैसर्गिक अभिनय का लोहा सभी मानते थे। गुरुदत्त रचनात्मक लेखक भी थे और उन्होंने शुरुआत में इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में कहानियां भी लिखी थीं।

0: Yes, and Sanjeev Kumar was born on this day in 1938. He was an iconic Indian actor, universally regarded as one of the most versatile thespians in the history of Hindi Bollywood cinema. Born Harihar Jethalal Jariwala, he's celebrated for his incredible acting range, effortlessly transitioning between intense dramatic performances and light-hearted comedic roles. Let's listen in to a dialogue from one of his hit movies.
1: Apne inspector nahi, sirf Thakur Baldev Singh.
2: Kyun? Katron se khelne ka shauk chhut gaya Thakur sahab?
1: Apni bahaduri par agar itna hi ghamand hai, to ek kaam karoge mere liye?
2: Hum kaam sirf paison ke liye karte hain.
1: Kitne chahiye?
3: संजीव ने IPTA और इंडियन नेशनल थिएटर के साथ मंच पर अपने करियर की शुरुआत की। 22 साल की उम्र में भी इन्होंने AK हंगल द्वारा निर्देशित ऑल माय सन्स एंड डमरू जैसे बुजुर्ग पात्रों को चित्रित करके दर्शकों को प्रभावित किया। इन्हें पहचान मिली फिल्म खिलौना से, तो आइए आपको सुनाते हैं इसी फिल्म का एक

0: आज ही जयंती है प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक के बालाचंद्र की। भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए वर्ष 2010 के लिए इन्हें प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रोताओं, समय हो चला है आपसे विदा लेने का। दीजिए इजाजत सरफिरोजी और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।
1: आकाशवाणी नेरम 5 मणि சென்னை வானொலி 100.1 MHz FM கோல்ட் வழங்கும் அரங்கிசை நிகழ்ச்சியில் பார்கவி பாலசுப்பிரமணியம் அவர்களின் சித்திர வீண இசை கேட்கலாம். மீரா சிவராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் வயலின், கே பி அனில்குமார் அவர்கள் மிருதங்கம். முதலில் ஷரணு சித்தி விநாயகா, புரந்தரதாசர் தேவர்நாமா, ராகம் சௌராஷ்டிரம், மிஸ்ர சாபு தாளம்.

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியில் செய்தி அறிக்கை டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत अधिक विकास और उपलब्धियां हासिल करने में विश्वास रखता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आज प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी वर्ष 2014 की यात्रा 28 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा थी।
2: मैं जब साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था तो 28 साल के बाद भारत का कोई पीएम यहाँ पहुँचा था। तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ, यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे से जुड़े ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि इस भविष्य उन्मुख भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का सबसे मजबूत आधार दोनों देशों के बीच सेतु का कार्य करने वाला जीवंत भारतीय प्रवासी समुदाय है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध गतिशील हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज मेलबर्न में श्री मिश्री ने कहा कि व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहित अनेक क्षेत्रों में दोनों देशों की द्विपक्षीय साझेदारी लगातार सुदृढ़ हुई है। गुजरात सरकार ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विकसित भारत डेटा सेंटर नीति 2026-29 का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य 8 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए गुजरात को भारत के अग्रणी डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में 6,00,000 करोड़ रुपए के निवेश और अधिक रोजगार सृजित करना है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की अग्रिम सीमा चौकियों का दौरा किया। सेना प्रमुख ने मौजूदा सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया और सैन्य तैयारियों की समीक्षा की। पदभार ग्रहण करने के बाद सेना प्रमुख का

0: पुंछ के अग्रिम क्षेत्रों का ये पहला दौरा है। सेना प्रमुख ने नगरोटा स्थित व्हाइट नाइट कोर मुख्यालय में वरिष्ठ कमांडरों से जम्मू क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और सैन्य तैयारियों की जानकारी ली। सरकार ने सोशल मीडिया पर उस दावे का खंडन किया है जिसमें भारत आ रहे एक एलपीजी टैंकर पर ईरान के मिसाइल हमले की बात कही गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताते हुए कहा है कि साझा की जा रही तस्वीर पिछले साल यमन के अदन तट के पास कैमरून के झंडे वाले एलपीजी टैंकर एमवी फाल्कन में विस्फोट के बाद लगी आग से संबंधित है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया है कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अमरीकी हवाई हमलों से दो दिन में 14 लोग मारे गए हैं और 78 घायल हुए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मानसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ चुका है। विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी नेरम 6:05।
2: நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷவாணியின் சென்னை எஃப்எம் கோல்டு 100.1.
1: விளம்பரங்களை தொடர்ந்து இன்றும் நாளையும் இடம்பெறும் நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய அறிவிப்பினை கேட்கலாம்.
3: கேட்ச் த ரெயின், बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
4: Where there's water, there's life. Come, let us adopt to rainwater harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct borewells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.
3: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
4: Where there's water, there's life. Come, let us adopt to rainwater harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct borewells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.
1: இன்று மாலை 6:30 மார்க்கெட் மந்திரா, இரவு 7:10 பட்ஸ் அண்ட் பிளாசம், ஏஐ அண்ட் மீ, லேர்னிங் டுகெதர் உரை வழங்குபவர் ஏ ஹீரா, மெமரபிள் ஸ்டோரி சொல்பவர் ஜே ஜோஹன்னா மேரி, மியூசிக்கல் டேலண்ட் சஹானா கார்த்திக்கின் பாட்டு, ரெனியூபிள் எனர்ஜி பவரிங்க சஸ்டைனபிள் ஃபியூச்சர் எஸ்ஆர் விபீஷ்ணவ் வழங்கும் உரை. 7:50 செய்தி கதம்பம், 8:10 திரைக்காணம், 9:15 ஸ்பாட்லைட், 9:30 கண்ட்ரி வைட் டெல்லி அஞ்சல், 9:45 இன்சைட்ஸ், 10:10 விஸ்வ தர்பன் டெல்லி அஞ்சல், 10:20 வேர்ல்ட் நியூஸ், 10:30 வெஸ்டர்ன் மியூசிக், 11:10 மார்க்கெட் மந்திரா, 11:40 திரைக்காணம். நள்ளிரவுக்கு பின் 12:10 இரவின் மடியில், 1:10 நினைவில் நின்றவை, 2:10 நெஞ்சம் மறப்பதில்லை, 3:10 இனிய ராகம் பேகம் பர்வின் சுல்தான் அவர்களின் பாட்டு, அதிகாலை 4:10 பொங்கும் மங்கலம், வள்ளலார் நகர் யூஇ பழனிவேல் அவர்களின் நாதஸ்வர இசை, குடியாத்தம் எஸ் ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களின் தவில், 5:10 புலரும் பொழுது, 6:10 தேனிசை, 7:25 திரை இசை, 7:30 ஆட் சவேரே செய்தி தொகுப்பு டெல்லி அஞ்சல், 8:30 திரைகாணம், 9:00 அரங்கிசை, கோலேரி ஜி வினோத்குமார் அவர்களின் நாதஸ்வர இசை, சின்னராஜகுப்பம் ஆர் எஸ் மகாலிங்கம் அவர்களின் தவில், 10:10 விஸ்வதர்பன் டெல்லி அஞ்சல், 10:20 வேர்ல்ட்

0: நியூஸ் டெல்லி அஞ்சல். 10:30 சுகமான ராகங்கள், 11:10 திரைகாணம், 11:30 மல்லே பூதண்டா தெலுங்கு நிகழ்ச்சி, ஜலகாலோஷ்யம் நிவாரண சரியாலு, உரை வழங்குபவர் ஸ்ரீமதி வி ஞான பிரசன்னுனா, உரை வழங்குபவர். 12:00 நிகழ்ச்சி நிரல், தொடர்ந்து திரைகாணம். 12:50 டெல் மெல்லிசை, பிற்பகல் 1:10 இசைமலர், லலிதா சேஷாத்ரி அவர்களின் பாட்டு, டி கே பத்மநாபன் அவர்கள் வயலின், கே வி பிரசாத் அவர்கள் மிருதங்கம், வைக்கம் ஆர் கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் கட்டம். 2:30 திரைகாணம், 3:00 மதுரம் மதுரம் ஈ சமயம் தெலுங்கு நிகழ்ச்சி, பிரபஞ்ச ஜனாப தினோத்சவம், 4:10 தேநீர் நேரம், 4:20 எம்ப்ளாய்மெண்ட் நியூஸ் டெல்லி அஞ்சல், 4:25 ரோஸ் த சம்சார் டெல்லி அஞ்சல், 4:30 பரிக்ரமா செய்தி தொகுப்பு டெல்லி அஞ்சல், மாலை 5:00 அரங்கிசை கீர்த்தனா வைத்தியநாதன் அவர்களின் பாட்டு, கும்பகோணம் எம் ஆர் கோபிநாத் அவர்கள் வயலின், மண்ணிக்குடி எஸ் சந்திரசேகர் அவர்களின் மிருதங்கம். 6:05 நிகழ்ச்சி நிரல், 6:10 விஸ்லேஷன் டெல்லி அஞ்சல், 6:30 மார்க்கெட் மந்த்ரா டெல்லி அஞ்சல், 7:10 இளைய பாரதம். சுற்றுச்சூழல் தனிநபர் பொறுப்பா சமூக பொறுப்பா பட்டிமன்றம், பங்கேற்பவர்கள் ஆர் பென்னிஹின், தனிநபர் பொறுப்பு அணி எஸ் கீர்த்தனா ஆர் சுபாஷ், சமூக பொறுப்பு அணி ஜி எஸ் கார்த்திக் கிருஷ்ணன், ஏ அனிஷா ஷரீன். தொடர்வது டெல்லி அஞ்சல்.
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं जया भारती। पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी थी, लेकिन अब हालात फिर से बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। क्षेत्र में बढ़ते तनाव और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर हुए हालिया हमलों ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। भारत ने भी इन घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव कम करने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। इस बीच विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर 5 जुलाई से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की यात्रा पर है। इस यात्रा के दौरान वे इन देशों के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के साथ साथ क्षेत्र के मौजूदा हालात पर भी चर्चा करेंगे। आज के विश्लेषण में हम समझेंगे कि खाड़ी क्षेत्र भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव का भारत और दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है, और भारत अपने रणनीतिक, आर्थिक और ऊर्जा हितों को सुरक्षित रखने के लिए खाड़ी देशों के साथ अपने संबंधों को किस तरह मजबूत कर रहा है। श्रोताओं, अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर बढ़ते तनाव का असर अब समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर भी दिखाई देने की पूरी संभावना है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने चेतावनी दी है कि अगर यह तनाव और बढ़ता है तो इसका असर केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, इससे क्षेत्रीय शांति, वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि आखिर खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव का दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है और भारत के लिए यह स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
3: पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले कई व्यापारिक जहाजों पर हमलों की खबरें सामने आई हैं। इन घटनाओं के बाद संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने गहरी चिंता व्यक्त की है और सभी पक्षों से संयम बरतने तथा तनाव कम करने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के अनुसार इस मार्ग से सामान्य समय में लगभग 130 जहाज प्रतिदिन गुजरते थे, लेकिन हाल के तनाव के कारण आवाजाही प्रभावित हुई है और करीब 6,000 नाविक सैकड़ों जहाजों पर फंसे हुए हैं। दरअसल हॉर्मुज जल डमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। ये फारस की खाड़ी को खुले समुद्र से जोड़ता है। दुनिया के समुद्री रास्ते से होने वाले तेल व्यापार का लगभग 1/4 और लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG का लगभग 1/5 हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। खाड़ी

0: के कई देशों जैसे कतर, कुवैत, बहरीन और इराक के लिए यही मुख्य समुद्री मार्ग है। ऐसे में यदि इस मार्ग पर आवाजाही प्रभावित होती है तो इसका असर दुनिया भर में तेल और गैस की आपूर्ति पर पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक आयोग ने भी आशंका जताई है कि यदि तनाव जारी रहता है तो ऊर्जा की कीमतों में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है और आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। भारत के लिए भी ये स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से प्राप्त करता है। कच्चे तेल और एलएनजी की आपूर्ति का एक बड़ा भाग इसी समुद्री मार्ग से होकर भारत पहुंचता है। ऐसे में इस क्षेत्र में अस्थिरता का असर ऊर्जा आपूर्ति, परिवहन लागत और देश के आर्थिक हितों पर पड़ सकता है। इसके अलावा खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक रहते हैं और काम करते हैं। ऐसे में क्षेत्र में शांति और स्थिरता भारत के लिए केवल ऊर्जा सुरक्षा का ही नहीं बल्कि अपने नागरिकों और व्यापक आर्थिक हितों की सुरक्षा का भी विषय है।
1: ऐसे समय में जब खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है, भारत केवल हालात पर नजर नहीं रख रहा बल्कि अपने रणनीतिक, आर्थिक और ऊर्जा हितों को सुरक्षित रखने के लिए लगातार सक्रिय कूटनीतिक प्रयास भी कर रहा है। इसी दिशा में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की यात्रा पर हैं। आखिर इस यात्रा का महत्व क्या है और इससे भारत के हितों को किस तरह मजबूती मिलेगी, जानने के लिए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
0: खाड़ी क्षेत्र भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल यानी GCC के देशों के बीच व्यापार और निवेश भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में क्षेत्र में शांति और स्थिरता भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसी पृष्ठभूमि में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाना है। इसके साथ ही क्षेत्र के मौजूदा हालात और आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जा रही है। डॉक्टर एस जयशंकर की ये यात्रा केवल कूटनीतिक मुलाकातों तक सीमित नहीं है बल्कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय हितों से भी जुड़ी है। कतर भारत का प्रमुख LNG साझेदार है, इसलिए वहाँ ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्र के हालात पर विशेष चर्चा हुई। बहरीन में बातचीत का केंद्र समुद्री सुरक्षा, खाड़ी क्षेत्र के महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग रहा। विदेश मंत्री ने वहाँ रह रहे भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बहरीन की भूमिका की सराहना की। कुवैत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने समकक्ष शेख जर्रा जाबेर अल अहमद अल सभा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र में मौजूदा तनाव और उसके क्षेत्रीय तथा वैश्विक प्रभावों पर चर्चा की। कुवैत में भारतीय समुदाय के हितों और खाद्य सुरक्षा के साथ साथ रक्षा सहयोग भी चर्चा का प्रमुख विषय रहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुवैत के रक्षा मंत्री के साथ रक्षा उद्योग में सहयोग बढ़ाने और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने पर विस्तार से बातचीत की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर खाड़ी देशों की यात्रा के अंतिम चरण में ओमान पहुंचे, जहां उन्होंने विदेश मंत्री सैयद बद्र अल बुसैदी के साथ व्यापक वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत ओमान रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की और द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी CEPA को प्रभावी ढंग से लागू करने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले वर्ष ओमान यात्रा के दौरान लिए गए निर्णयों की प्रगति की समीक्षा करने और क्षेत्रीय तथा वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत आज केवल ऊर्जा आयात तक सीमित सोच नहीं रखता, वो खाड़ी देशों के साथ रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश, डिजिटल प्रौद्योगिकी, खाद्य सुरक्षा और नई तकनीक जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहा है। यही व्यापक साझेदारी भारत को बदलते वैश्विक हालात में अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों की बेहतर सुरक्षा करने में मदद करती है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: श्रोताओं, बदलते क्षेत्रीय हालात के बीच भारत की सक्रिय कूटनीति और खाड़ी देशों के संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है। ऐसे समय में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की यह यात्रा भारत की ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री हितों और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को किस तरह नई मजबूती देती है, इन्हीं पहलुओं पर आकाशवाणी ने पूर्व राजदूत अनिल वाधवा से विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
2: भारत की आर्थिक वृद्धि और विकास की महत्वाकांक्षाएं किफायती और निर्बाध ऊर्जा

0: आपूर्ति से जुड़ी हुई हैं। पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति एक तात्कालिक चुनौती होने के साथ साथ एक दीर्घकालिक रणनीति परीक्षा भी है। दुनिया के कच्चे तेल और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का एक बड़ा हिस्सा हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। ऐसे में इस मार्ग में किसी भी तरह का व्यवधान, चाहे वह कुछ समय के लिए ही क्यों न हो, कुछ ही घंटों में वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर सकता है। भारत के लिए ये घटनाक्रम विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता और सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 80% आयात करता है और प्राकृतिक गैस की जरूरत का आधे से अधिक हिस्सा भी आयात के माध्यम से पूरा करता है। इनमें से एक बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से आता है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और कतर भारत के सबसे विश्वसनीय ऊर्जा साझेदारों में शामिल हैं।
1: श्रोताओं, बदलते वैश्विक हालात में भारत की प्राथमिकता शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के साथ साथ अपनी ऊर्जा सुरक्षा, समुद्र हितों और आर्थिक साझेदारियों को मजबूत बनाए रखना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की यह यात्रा इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जो भारत की सक्रिय कूटनीति और अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसी के साथ आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी अनिकेत ने, तकनीकी सहयोग दिया है अरुणदीप सिंह ने।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः उद्घोषः एकविंशतिशताब्द्याः नूतनभारतं विकसितराष्ट्रनिर्माणस्य लक्ष्यं प्रति द्रुतगत्या अग्रेसरति। मेलबोर्न्नगरे भारतीयसमुदायस्य भव्यं सम्मेलनञ्चासौ सम्बोधयति। भारत आस्ट्रेलियादेशयोः मध्ये रक्षासुरक्षासहयोगाय ऐतिहासिकं संयुक्तघोषणापत्रं हस्ताक्षरितम्। अनेन सहैव ऑस्ट्रेलिया देशस्य यूरेनियम धातोः दीर्घकालिक आपूर्तेः महत्वपूर्ण सन्धिः अपि निष्पादितः। उपराष्ट्रपतिना सीपी राधाकृष्णनेन भुवनेश्वरे गभीर समुद्र मत्स्यपालन संपदः शाश्वत उपयोगाय राष्ट्रियाभियानस्य विहितं विधिवत् अनावरणम्। राष्ट्रियशिक्षानीतेः अन्तर्गतं वयस्कसाक्षरतामानदण्डानवाप्य उत्तराखण्डराज्यं देशस्य पूर्णसाक्षरराज्यानां गौरवपूर्णसूच्यां सम्मिलितम्। प्रावृष्टावत् कृत्स्नेहि देशे व्याप्ता दिल्ल्यां विगतरात्रिकालात् अश्रान्तवृष्ट्या सामान्यजनजीवनम् अत्यन्तं बाधितम्। अपि च भारत इंग्लैण्डयोः मध्ये पञ्चक्रीडात्मिकायाः चतुर्थी अन्ताराष्ट्रियप्रतिस्पर्धा अद्य रात्रौ तावत् दशवादने क्रीडिष्यते। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रावोचत् यत् एकविंशतिशताब्द्याः भारतं विकसितभारतं भवितुं सङ्कल्पबद्धो वर्तते। तेनोदीरितं यत् साम्प्रतं भारतं तादृशः देशः यः अधिकविकासे विश्वसिति।
1: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है।
0: विगत द्वादशवर्षेषु स्वस्य तृतीयम् आस्ट्रेलिया भ्रमणं हैट्रिक इति विज्ञापयता तेन प्रतिपादितं यत् एषः प्रवासः भारत आस्ट्रेलिया सम्बन्धानां ऊर्ध्वगामितां सूचयति। अत्रावसरे आस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमन्त्री एन्थनी अल्बनीज इत्यसावपि तत्र उपस्थितः आसीत्। तेन तत्रत्यं जन उत्साहं दृष्ट्वा एषा सहभागिता दृढतरा इत्युक्तम्। अस्मात् पुरा उभयोः देशयोः नेतृभ्यां मेलबर्न नगरे तृतीये

0: भारत आस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा शिष्ट मण्डल स्तरीया द्विपाक्षिकी वार्ता विहिता। हिन्द प्रशांत क्षेत्रे शान्तिं स्थिरतां च स्थापयितुं द्वाभ्यां नेतृभ्यां रक्षा सुरक्षा सहयोग संयुक्त घोषणापत्रे हस्ताक्षरं विहितम्।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर,

0: इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: वार्ताहरान् सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी न्यगादीत् यत् भारत आस्ट्रेलिया देशाभ्यां परमाणु ऊर्जा क्षेत्रे कश्चन ऐतिहासिकः सहयोगः साधितः। अनेन आस्ट्रेलिया देशात् भारताय यूरेनियम् इत्यस्य आपूर्तिः सुलभा भविष्यति। अयं संयोगः भारतस्य स्वच्छोर्जा लक्ष्याय नवीनां गतिं प्रदास्यति। अनेनैव सह साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एवं सप्लाई चेन प्रणाल्याः संचालनेन सहैव एकात्म महत्वपूर्ण खनिज वीथि निर्माणेन सामरिक औद्योगिकी सुरक्षा क्षेत्रम अनवरतम समेधते।
0: आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है।
1: अद्य प्रातः तावत् उभौ प्रधानमन्त्रिणौ भारत आस्ट्रेलिया सीईओ फोरम इत्यस्मिन् भागं गृहीतवन्तौ। उपराष्ट्रपतिना सीपी राधाकृष्णन इत्यनेन अद्य भुवनेश्वरे ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयस्य प्रांगणे भारतस्य उच्च समुद्र मत्स्यपालन संपदः शाश्वत उपयोगाय एकस्य ऐतिहासिक राष्ट्रीय अभियानस्य विधिवत शुभारंभः अकारि। अत्रावसरे ब्लू इकोनॉमी इति समुद्राधारितार्थव्यवस्था इत्येतत् राष्ट्रीय समृद्धेः एकं दूरगामी परिवर्तनकारी इंजन इति वर्णयन् उपराष्ट्रपतिः देशस्य यूनां प्रति आह्वानं कृतवान्। तैः विकसित भारतस्य आधारशिलात्वेन आधुनिकाः प्रौद्योगिकी संचालिताः मत्स्यपालन सामुद्रिकवृत्तयः पूर्णोत्साहेन अंगीकरणीयाः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। उत्तराखण्डराज्यं राष्ट्रियशिक्षानीति विंशतेः उल्लास इति नूतन भारत साक्षरता कार्यक्रमस्यान्तर्गतं निर्धारितान् वयस्क साक्षरता मानदण्डान् सम्प्राप्य देशस्य षष्ठं पूर्ण साक्षरराज्यं भवितुं गौरवास्पदं स्थानम् अवाप्तवान्। केन्द्रीयशिक्षामन्त्रालयस्य विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारितानां मानदण्डानां पूर्त्यनन्तरं ह्यः राज्यपालेन अस्याः ऐतिहासिक घोषणायाः अनुमोदनं कृतम्। अन्यासाम् उपलब्धीनां श्रृङ्खलायाम् अनेन कीर्तिमानेन सह उत्तराखण्डः अधुना मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचलप्रदेश, सिक्किम इत्यादीनां पूर्णसाक्षरराज्यानां सूच्यां सम्मिलितो जातः। यः राज्यस्य शैक्षणिक विकासस्य यात्रायामेकः महत्वपूर्णः अवसरो वर्तते। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इमाम् उपलब्धिम् ऐतिहासिकी इति वर्णयन् सहर्षं प्रावोचत् यत् सफलतेयं सर्वकारस्य निरन्तरप्रयासानां सममेव राज्यस्य नागरिकाणां सक्रियसहभागितायाः एव सुखदः परिणामो वर्तते। अद्य प्रावृष सम्पूर्णे देशे पूर्णतया व्याप्ता अस्ति। प्रावृष राजस्थान हरियाणा पंजाब प्रान्तं समेत्य उत्तर अरबसागरस्य अवशिष्टेषु सर्वेषु भूभागेषु अग्रे प्रवर्धिता। आकाशवाण्याः वार्ताहरैः सह विशेष वार्तालापं कुर्वन् भारतीय ऋतुविज्ञान विभागस्य वरिष्ठ वैज्ञानिकः डॉक्टर नरेश कुमारः ब्रूते यत् विगतेषु कतिपयेषु दिनेषु दिल्ली एनसीआर, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड प्रान्तेषु मध्यमतः तीव्रा वृष्टिः अश्रान्तं प्रचलति। दिल्ल्यां तस्य समीपस्थेषु च क्षेत्रेषु गतरात्रिकालात् जायमानया अविरतवृष्ट्या सामान्य जनजीवनं पूर्णतः प्रभावितं सञ्जातम्। अद्य प्रातः दिल्लीवासिनः तीव्र मेघगर्जन विद्युत्पाता

0: Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Manoj Pathak.
1: Namaskar, Market Mantra ke taza ant mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karyakram mein hamesha ki tarah hum desh aur duniya ki chuni hui karobari, aarthik aur share bazar se sambandhit taza khabron ko lekar hazir hain. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं देश के जाने माने वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा. डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: जी थैंक यू मनोज जी.
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अनुभा रोहतगी.
0: थैंक यू मनोज. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज राइज, सेंसेक्स एड्स ओवर 200 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 23,963. India and Australia sign landmark deals on uranium supply and dedicated critical minerals corridor. Also operationalized partnership in cyber critical technologies and supply chains. And global crude oil prices rise.
1: घरेलू शेयर बाजार में खरीदारी से प्रमुख सूचकांक लाभ के साथ हुए बंद. सेंसेक्स 200 अंक से अधिक उछला. निफ्टी 24,963 दर्ज हुआ. भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और डेडिकेटेड क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए. साइबर सुरक्षा, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन के क्षेत्र में साझेदारी पर भी हुआ समझौता. और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम बढ़े.

0: स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप 100 इंडेक्स 1.4% लाभ में रहा, स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में 1.8% की वृद्धि हुई।
1: Benchmark domestic equity indices ended with modest gains of over 0.3% today. The Sensex rose 238 points to close at 76,742. The Nifty added 81 points to settle at 23,963. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index climbed 1.4%, while the Small-Cap 100 Index surged 1.8%. Earlier markets opened on a positive note and traded higher despite lingering geopolitical uncertainties. However, both indices spared their early gains in the final half hour of trade amid profit booking.
0: Nazar dalein Sensex ki 30 companiyon par, to 30 mein se 17 companiyon ke shareon mein aaj tezi dekhne ko mili. Behtar pradarshan karne wali companiyon ke shareon mein sabse upar rahi dawa company Sun Pharma, जिसके शेयर 2.7% लाभ के साथ बंद हुए। भारतीय एयरटेल और बजाज फिनसर्व दोनों को 2.1% से अधिक का मुनाफा हुआ। इंडिगो के भाव 2% से अधिक उछल गए। उधर घाटा उठाने वाली कंपनियों में प्रमुख रहे इन्फोसिस, जिसके शेयर 1.8% नीचे आकर बंद हुए। मारुति और एनटीपीसी के शेयरों में 1.5% की गिरावट देखने को मिली। एक्सिस बैंक को 1% का घाटा हुआ।
1: In the sectoral indices on the BSE, 22 out of 25 sectors ended in the positive zone among the top gainers. Realty jumped 3.7%. PSU banks rose over 1.7% and telecommunication added nearly 1.7%. In contrast, utilities dropped 0.3%, IT fell 0.25%, and auto dipped 0.1%. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,825 companies advanced, shares of 1,424 companies declined, while shares of 167 companies remained unchanged.
0: नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 18 पैसे मजबूत हुआ, 95.30 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतरदिवसीय कारोबार में 101 पर चल रहा था। यहाँ पर समझना चाहेंगे सबसे पहले हम ये कि कल बाजार में, दुनिया भर के बाजारों में हाहाकार के आसार दिख रहे थे और लग रहा था कि पता नहीं कितना लंबा चले, आज हमारे बाजार ने मजबूती दिखाई, क्या मुख्य कारण रहे?
2: देखिए मनोज जी, आपने जैसे बताया कि बहुत ही ऐसे हाहाकार जैसे हालात बने हुए थे, तो एकदम से मार्केट्स ने रिबाउंड किया और जैसे हमें लग रहा था कि शायद मार्केट आज के दिन भी गिरेंगी, कल का हालात तो ये बता रहे थे, लेकिन उसमें पहले तो ट्रंप साहब ने जैसे बोला कि भाई अभी जी, कोई समझौता हो ही नहीं सकता, आई विल नॉट लिसन ईरान, अभी मैं बात ही नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने फिर बाद में एक देर रात एक स्टेटमेंट दिया कि उनको कुछ फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि समझौते की बात वो करना चाहते हैं, तो जिससे कि मार्केट्स ने रुख अपना बदला कि शायद अभी भी स्कोप है, समझौता हो सकता है और किसी शांति प्रस्ताव की आगे संभावना हो सकती है, तो मार्केट्स ने अपना रुख लिया। ये टोटली वॉलेटिलिटी है जो एक्चुअल में, तो जो भी कुछ हो रहा है हो रहा है, लेकिन जो न्यूज़ बेस्ड जो हम बातचीत के जरिए से जो एक वॉलेटाइल होती है मार्केट्स, उसमें जो ट्रंप साहब के स्टेटमेंट ही इसमें मेन ड्राइवर बनते हैं सभी इन उथल पुथल में जी। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मार्केट्स में वॉलेटिलिटी अभी जारी रहेगी, मार्केट्स में मार्केट शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड कि भाई आज मार्केट ऊपर गया और कल फिर जाएगा, क्योंकि कुछ भी स्टेटमेंट और आ सकता है, तो यहाँ पे इन्वेस्टर को बहुत सोच समझ के, जिसको हम कहते हैं कि फूक फूक के कदम रखने वाली बात होती है, उस हिसाब से चलना होगा।
1: Dr. Sharma, I want to ask you one thing. Like we saw, of course, as we are discussing that despite the plunge that we saw yesterday, the markets recovered and very smartly today.
2: Yes.
1: Do you think one of the driving factors in the markets every day that we see is the prices of international crude oil prices?
2: Right.
1: Now, we have seen since yesterday the statement when it came, when you told, like you said, the US president made certain statements regarding the ceasefire with Iran and which saw the oil prices going up. But still, at the same time, the oil prices are still within that 80 to 85 or, you know, 79 to 85 dollars per barrel range. So do you think that is also because it's still at a comfortable, I would say, range?
2: Right.

0: which is what is, you know, also like giving some scope or some kind of a comfort to the markets,
1: right,
0: that the oil prices are still, you know, in a manageable range.
1: Yes, exactly. Because earlier prices were more than 100 per barrel, and many of the times more than 95. Now the prices are at 80 to 80. So these are significantly low as compared with the peak of the prices due to the this tussle. So that's why markets are not taking the prices in a negative sense. The markets are still very, very positive that if Trump processes peace, then there is a great scope to move forward and to rebound significantly to the next level.
0: Right.
1: So that is the market breadth, that markets are only waiting the good words from the mouth of Mr. Trump.
0: Another factor, which I don't know, you'll have to tell us whether that has also worked in favor of the markets, you know, ending in green today. Yesterday, the IMF report came out, International Monetary Fund report, World Economic Outlook update came out, mm-hmm. according to which India's growth for this present calendar year has been projected at 7%. If you look at the overall picture, you know, the world, global, the growth of figures for the world has come to 3%. Whereas for India, it is saying for this particular calendar year, that is 26, it has been projected at 7%. Do you think that's also a very big confidence booster?
1: Yes, that is a very big confidence booster, because we are the fastest growing economy in the world economic system. And we are significantly higher than the world average of 3%, and much, much higher than the advanced economies, even faster than China.
0: Yes.
1: China is at around somewhere between 4 to 4.5%.
0: Yes.
1: But India's growth, if you go by the numbers from 21, 22 to 25, 26, we are more than 7% on an average. And last year, in the last fiscal, in 25, 26, we grew at 7.7%.
0: Yes.
1: And for the current year, there are projections that India will grow at 6.6, or some projections are at around 7% also. And if the peace process deepens, if the peace is there, then India has every potential to grow at around 7% for the current year also. But India is always above the IMF projections.
0: Right.
1: I observed this since last many years, that India is above every projection of IMF so far during the last 6-7 years. In the calendar year and in the financial year.
2: यहाँ पर डॉक्टर शर्मा, हम आप ही के आंकड़ों को समझना चाहेंगे. मैक्रो के जो हमारे फिगर्स हैं वो क्या दर्शा रहे कि IMF की जो अनुमान होता है उसके भी ऊपर हमारा आखिरकार विकास बीते वर्षों में भी हमने दर्ज किया, और इस वर्ष भी यदि सब कुछ ठीक रहा तो हम बेहतर कर पाएंगे. क्या हमारे वो कारक हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं?
1: देखिए, हमारे जो कारक हैं वो मेजरली हमें जो सपोर्ट आती है, तो जो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन है, खास करके जो रूरल डेवलपमेंट, वहाँ से हमें बहुत सपोर्ट आती है. जो हमारी इकोनॉमिक, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि IIP नंबर्स है, IIP नंबर्स बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग लास्ट ईयर 10% से ज़्यादा ग्रो किया, और जो डिजिटल इकोनॉमी है बहुत अच्छे से बूस्ट कर रही है. तो जो IMF के एक पैरामीटर्स होते हैं, जिनमें इस समय पे वो सभी संभावनाओं को देखते हुए कि शायद ये जो क्वैगमायर है मिडल ईस्ट का, ये इंडिया की ग्रोथ को इम्पैक्ट करेगा, तो वो सारे फैक्टर्स को लेके अनुमान लगाते हैं कि जो ग्रोथ है वो इस लेवल पर रहेगा. बट इंडिया का जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है, दैट इज सपोर्टेड बाय मेनी अदर फैक्टर्स आल्सो, लाइक द इनफॉर्मल सेक्टर इज ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली. उसका जो ग्रोथ है उसको अनुमान करना कि वो कहाँ पे जाके आगे कंट्रीब्यूट करेगा, वो इस जंक्चर पे काफ़ी डिफिकल्ट होता है. व्हेन यू सी द नंबर्स, तभी वो जाके पता चलता है कि हमारा तो जो मैन्युफैक्चरिंग है, हमारा तो सर्विसेज सेक्टर है जो इस तरीके से ग्रो कर रहा है. तो कुल मिला के मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे नंबर्स हैं, दीज नंबर्स आर सिग्निफिकेंटली हायर देन द IMF नंबर्स. हमेशा मैं ये देखता हूँ.
0: लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS टुडे रिपोर्टेड इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू जून 2026. द कंपनीज रेवेन्यू ग्रू बाय 2.2% टू 72,275 करोड़ रुपीज ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस. ऑन एन एनुअल बेसिस द रेवेन्यू इंक्रीज्ड नियरली 14%. हाउएवर नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ड्रॉप्ड नियरली 2.7% टू 13,349 करोड़ रुपीज quarter on quarter basis. The information technology major has declared an interim dividend of 12 rupees per share.
2: यहाँ पर हम समझना चाहेंगे पूरे

0: आईटी सेक्टर की स्थिति को और जो एआई का एक कह लें नया नई हवा चली है उससे दुनिया भर के बाजार प्रभावित हो रहे हैं और ख़ासतौर से पूरा सेक्टर आईटी सेक्टर का। तो हमारे यहाँ सर्विसेज के ज़रिए हमने कह लें कि अच्छी फसल काटी, आने वाले दिनों में एआई हमारे आईटी सेक्टर को किस रूप में प्रभावित करने जा रहा है?
1: देखिए, मैं मनोज जी नहीं समझता कि जो एआई है उसका कोई ख़राब असर आईटी सेक्टर के ऊपर पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि एआई के आने से आईटी सेक्टर और भी अच्छे से ग्रो करेगा, लेकिन अभी जो आईटी कंपनीज के ऊपर दबाव आता है आप देखेंगे कि वो एआई का नहीं है ज़्यादातर, वो ये जो क्राइसिस है मिडिल ईस्ट इसकी वजह से प्रभावित होता है। इसकी वजह आप देखेंगे कि जब भी कुछ ऐसी पीस प्रोसेस आती है तो ये शेयर्स भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, ऊपर भागते हैं। तो एआई का जो इम्पैक्ट है वो नहीं होगा कोई भी आईटी के ऊपर, ये मेरा मानना है कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट नेगेटिवली द आईटी सेक्टर।
0: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार। एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज खरीदारी तेज रही है, हालांकि कुछ स्थानों पर बिकवाली भी देखने को मिली। निवेशकों की खरीदारी से चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.6% लाभ के साथ बंद हुआ। जापान के निकेई 225 सूचकांक में 1.4% की वृद्धि हुई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 1.2% ऊपर आ गया। दक्षिण कोरिया के कोसी में 0.6% से अधिक की वृद्धि देखने को मिली। उधर चलन के विपरीत ताइवान का ताइएक्स 0.8% लुढ़क गया। हांगकांग के हिंगसेंग में भी 0.7% की गिरावट हुई। अन्य आर्थिक खबरों पर ध्यान दें तो चीन में उपभोक्ता मूल्य में इस वर्ष जून महीने में वार्षिक आधार पर 1% की वृद्धि हुई है, हालांकि विगत मई में 1.2% की वृद्धि दर्ज हुई थी, यानी थोड़ा सा कम रहा। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये चीन के आंकड़े हैं तो वहीं के ये आंकड़े हैं, की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स वार्षिक आधार पर बढ़कर 4.1% दर्ज हुआ, जबकि विगत मई में यह वृद्धि 3.9% रही थी। उधर यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो वहां समाचार तैयार किए जाने तक मिलाजुला रुख था। अंतरदिवसीय कारोबार में फ्रांस का कैक 40 0.3% ऊपर चल रहा था। जर्मनी के डेक्स में 0.1% की वृद्धि थी, जबकि लंदन का फुटसी 100 0.6% नीचे कारोबार कर रहा था।
2: Let's have a look at the US markets. Yesterday, the most US equities closed lower on Wednesday as renewed hostilities in West Asia pushed oil prices higher. Among the major indices, the Dow Jones Industrial Average slipped 1.1% and the S&P 500 declined 0.3%. Meanwhile, the Nasdaq Composite added 0.2%.
0: यहाँ पर हम एशियाई बाजार पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। बाजार तो दुनिया भर के अमेरिका और ईरान के तनाव में प्रभावित हुए हैं, लेकिन विशेष रूप से हम पूरे एशियाई जोन को देखें तो क्या आसार लग रहे इन आशंकाओं का, युद्धों का, और ताज़ा जो लहर उठी है एक नए दौर की, उसका क्या असर पड़ता दिख रहा है आपको?
1: देखिए मनोज जी, जो एशिया रीजन है इसमें ज़्यादातर बहुत अच्छे से इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं जो मेजरली एक वर्ल्ड के जो ग्रोथ ड्राइवर भी हैं, जिसमें आपके इंडिया है, चाइना है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, तो ये सभी कंट्रीज़ बहुत ही अच्छे से बिल्डअप किया है, बहुत अच्छे से आगे ग्रो कर रहे हैं। तो जब भी कोई ग्लोबल लेवल पे ऐसी होती है हलचल, जो जैसे अभी हम मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं, तो उसमें वर्ल्ड डिमांड तो स्लो होती है बिकॉज दे आर द मेजर सप्लायर्स, तो उनके जो एक्सटर्नल इकोनॉमी है उसके ऊपर इम्पैक्ट तो आता है, तो ग्रोथ प्रभावित तो होती है, बट वो इतना भी प्रभावित नहीं होती कि वो बहुत ज़्यादा या नेगेटिव में चले जाएगी या बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। 1-2% का फर्क आता है, जैसे हमने लेमन क्राइसिस में देखा जो 2008 में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो जो चाइना का ग्रोथ था वो लगभग कोई 10.25% से 3% फिसल के साथ पे आया था। इंडिया का 9% के आसपास से फिसल के कोई लगभग कोई 7.25% पे आया था, 6.5 और 7 के बीच में। तो इतना प्रभाव आता है जब भी कोई ऐसी बड़ी क्राइसिस आती है, ऐसे कोरोना के टाइम पे देखा गया
0: जी।
1: तो अभी भी वैसा ही प्रभाव है। तो मार्केट्स जब कोई ऐसी जैसे कल की घटना थी, ट्रंप साहब ने एकदम से अनाउंस

0: Government has waived basic customs duty on goods used in the manufacture of display assemblies, lithium ion cell and inductor coil module, with an aim to promote domestic production of electronic devices like smartphones, laptops, wearables and smart TVs. The Ministry of Finance has issued three separate notifications giving effect to the basic customs duty waiver on the goods used in the manufacture of the three key components used in electronic devices. The exemption is in line with the government's efforts to promote domestic electronics manufacturing under the PLI scheme. The duty waiver will reduce import dependence and strengthen the electronics ecosystem with local production. A comment on this: how important is this decision to waive, and how will it strengthen and stimulate the domestic electronics manufacturing ecosystem?
1: Yes, Anubhaji, because we are significantly progressing in the domestic electronics ecosystem, and as you must have observed that our electronics, our mobile phones are now gaining great pace in the global marketplace, and these are increasing significantly. Now we are the great exporter to many countries, to Africa and Europe and America. So going forward, government policies, particularly the ease of doing business and the PLI scheme, yes, for the such promising areas are very, very useful and beneficial for the producers and for the export markets. So going forward, I believe our electronic sector will become more robust, and this will support our overall trajectory of exports. Like, we have target of 1 trillion for the current financial year, and by 2030 we have 2 trillion target, 1 trillion from merchandise and 1 trillion from services. So such kind of promising sectors are required to move forward and to become very, very supportive for our overall exports.
2: यहाँ पर डॉक्टर शर्मा, हम आम श्रोताओं के नज़रिए से समझना चाहेंगे कि ये सिर्फ राजस्व कमाने का जरिया बनेगा या हमारे गजट भी थोड़े सस्ते हो जाएंगे कस्टम शुल्क घटने से?
1: देखिए, इसमें जो देखो, एवरी स्टेप इज फॉर द वेलफेयर क्रिएशन.
2: जी जी,
1: सरकार कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेती है कि वो खाली अपना राजस्व को इंक्रीज करने के लिए होगा. सब जो कंज्यूमर, जो पीपल वेलफेयर है, दैट इज एट ऑलवेज एट द फ्रंट एंड द कोर ऑफ द एजेंडा. जैसे अभी सरकार ने, आपने देखा होगा, जीएसटी में कितने रिलीफ दिए पीछे, जो कुछ 6 महीने पहले की बात है, तो कितना उसे हमारी कंजम्पशन ट्रैजेक्टरी कितनी मजबूत हुई.
2: बिल्कुल बिल्कुल.
1: और डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड्स, हमारी जो ग्रोथ है वो कितना इंटैक्ट रही. 7.7% इज नॉट अ इजी टास्क इन सच अ क्वागमायर ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट्स. हम फिर भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का हमारा खिताब जो है मौजूद है.
2: यानी प्रधानमंत्री जो कहते रहते हैं, आपदा में अवसर ढूंढने की कला हम भारतीयों ने सीखी, तो वो हम निकाल लेते हैं.
1: वो हमने प्रूव किया, वो नंबर्स बता रहे हैं कि हमने ऐसा किया.
0: Let's move on to commodities. Global crude oil prices rose today. Brent crude was trading 0.9% up at $78.69 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 0.7% up at $74.05 per barrel when reports last came in. And also, let's have a look at the prices of gold and silver in the Indian bullion market. 24 carat gold was trading 0.7% up at 1,45,140 rupees per 10 grams, while silver was trading 1.4% up at 2,26,540 rupees per kilogram a short while ago.
2: श्रोताओं, आइए आपको लिए चले मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जहां अगस्त अनुबंध वाला सोना समाचार तैयार किए जाने तक 0.6% महंगा होकर 1,44,626 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था. उधर सितंबर अनुबंध वाली चांदी 1.4% की बढ़त के साथ 2,26,500 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी. यहाँ पर हम समझना चाहेंगे, डॉक्टर शर्मा, आप लगातार सोने में बुलिश रहे हैं और आपके अनुमान समय की कसौटी पर हर बार खरे साबित हुए हैं. यानी मार्केट मंत्र के श्रोताओं के लिए आप खरे विशेषज्ञ के रूप में सोने के मूल्य को लेकर दिखे हैं. तो अब यहाँ से सोना किस दिशा में जा रहा, अब के स्तर पर निवेश करना कितना उचित होगा और किस रूप में आगे बढ़ना चाहिए यदि कोई खरीदना अभी भी चाहे तो?
1: ठीक है, दोनों ही कंसोलिडेशन मोड में है, गोल्ड एंड सिल्वर. आपने देखा होगा कि अभी जो पिछले 5-6 महीने से जो रेंज है, खास करके फरवरी के बाद, वो गोल्ड में 2.30 और 2.60 के बीच में है और सिल्वर में 2.25 से 2.5 के बीच का रेंज बना हुआ है. तो ये रेंज थोड़ी देर और बरकरार रह सकती है, कंसोलिडेशन का मोड है. लेकिन इन द लॉन्ग रन, अगर हम आज से 3 साल या

0: पाँच साल का होराइजन लेके चले तो प्राइसेस आपको इससे कहीं ज़्यादा मिलेंगे आने वाले टाइम।
1: यानी आने वाले दिन में चमक तेज ही होगी सोने के, ऐसे आसार हैं। यहाँ बहुत संक्षेप में, निवेश करना हो सोने में तो कैसे करें?
0: देखिए, निवेश के लिए सबसे बढ़िया जो तरीका है वो ETF है। मैं सजेस्ट करूंगा कि ETF में करें, जिससे कि देश को भी फायदा और कंज्यूमर को भी, जिससे जो मनी भी है वो फाइनेंशियलाइजेशन होगा और उनको भी फायदा, तो सब जने।
1: यानी भौतिक सोना की जगह निवेश की दृष्टि से ETF सही सौदा। यहीं पर श्रोताओं की ओर से डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी शुक्रिया, थैंक यू।
2: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices rise, Sensex adds over 200 points, Nifty settles at 23,963. India-Australia sign landmark deals on uranium supply and dedicated critical minerals corridor also operationalize. Partnership in cyber, critical technologies and supply chains. And global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at the same time. For now, goodbye. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत अधिक विकास और उपलब्धियां हासिल करने में विश्वास रखता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आज प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी वर्ष 2014 की यात्रा 28 वर्ष बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऑस्ट्रेलिया यात्रा थी।
1: मैं जब साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था तो 28 साल के बाद भारत का कोई पीएम यहाँ पहुंचा था। तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ, यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे से जुड़े ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस भविष्य उन्मुख भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का सबसे मजबूत आधार दोनों देशों के बीच सेतु का कार्य करने वाला जीवंत भारतीय प्रवासी समुदाय है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध गतिशील हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज मेलबर्न में श्री मिश्री ने कहा कि व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहित अनेक क्षेत्रों में दोनों देशों की द्विपक्षीय साझेदारी लगातार सुदृढ़ हुई है। भारतीय गुणवत्ता परिषद ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य देश भर में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए गुणवत्ता और बाजार पहुंच को मजबूत करने के लिए सहयोगात्मक प्रणाली स्थापित करना है। गुजरात सरकार ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विकसित भारत डेटा सेंटर नीति 2026-29 का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य 8 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए गुजरात को भारत के अग्रणी डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में 6 लाख करोड़ रूपये के निवेश और अधिक रोजगार सृजित करना है। ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक आज कोच्चि में संपन्न हुई। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि

0: ब्रिक्स सदस्य देशों के सामने महिलाओं के विकास से जुड़े कई मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि ये साझा चिंताएं ब्रिक्स महिला मंत्रियों के मंच जैसे प्लेटफॉर्म के महत्व को दर्शाती हैं। ये सदस्य देशों के बीच संवाद और सहयोग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मॉनसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ चुका है। विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच चौथी T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi today outlined a powerful roadmap for a future-ready and developed India, driven by the mantra Grow More, Achieve More. Addressing the Indian diaspora in Melbourne, Mr. Modi highlighted India's economic and technological progress.
2: 21st sadi ka Bharat aaj viksit hone ke lakshya par kaam kar raha hai. Ye wo Bharat hai jo kehta hai Grow More, Achieve More. हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है।
1: While crediting the Indian community for strengthening bilateral partnership, Mr. Modi asserted that ties between India and Australia have reached great heights. Mr. Modi highlighted the cultural roots, mini India hubs, and emotional bonds across borders. Speaking on the occasion, Australian Prime Minister Anthony Albanese said, the enthusiasm at the event reflected the strength of the Australia-India partnership and the growing warmth in bilateral relations. Later, briefing media in Melbourne, Foreign Secretary Vikram Misri said, the relationship between India and Australia is a dynamic and a fast-growing one. Early in the day, Prime Minister Modi and his Australian counterpart participated in the third Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne, during which they held delegation-level talks aimed at strengthening bilateral ties. To secure peace and stability across the Indo-Pacific, the two leaders signed a landmark joint declaration on defence and security cooperation, institutionalised an annual Defence Ministers Dialogue, and launched a unified maritime security collaboration roadmap. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said, the two countries have signed a significant agreement in the field of nuclear energy that will enable the supply of uranium from Australia to India. He also announced the operationalization of the Australia-India Partnership on Cyber, Critical Technologies and Supply Chains and a dedicated critical minerals corridor. Prime Minister Modi arrived in Melbourne last evening after concluding his visit to Indonesia. In a profound testament to the civilizational resonance anchoring modern diplomacy, Australia is set to repatriate three culturally significant ancient antiquities to India. Culture Ministry said these artifacts include a ceremonial bronze trident of goddess Bhadrakali, a majestic granite idol of Nandi, and a basalt sculpture depicting the six-headed Kartikeya. All these items date back to the 11th and 12th centuries and were originally sourced from historic temples in Tamil Nadu. The Central Bureau of Investigation, CBI, and DRI Mumbai, in a joint operation, have busted wildlife trafficking racket. During the operation, they have recovered and rescued 53 protected animals and birds, including star tortoises, Egyptian vultures, and shikra birds. The CBI has registered two separate cases in this regard, and three accused persons have been arrested from Mumbai and three from Kolkata. The government has waived the basic customs duty on goods used in manufacturing of display assemblies, lithium-ion cell and inductor coil module, with an aim to promote domestic production of electronic devices like smartphones, laptops,

மகரி சனி பா.

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கை டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பிரியங்கா அரோடா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में ऐतिहासिक मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई उल्लेखनीय ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चिप से लेकर जहाजों तक फैले विनिर्माण भारत में एक नया विनिर्माण तंत्र विकसित हो रहा है।
2: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत की 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी और 2036 ओलंपिक के लिए दावेदारी का उल्लेख करते हुए खेल जगत में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस आयोजन की ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। श्री अल्बनीज ने प्रवासी भारतीयों को ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि को गति देने वाली एक बहुसांस्कृतिक शक्ति बताया और अटूट साझेदारी को आधार देने वाला जीवंत सेतु बताया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध गतिशील हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज मेलबर्न में श्री मिश्री ने कहा कि व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहित अनेक क्षेत्रों में दोनों देशों की द्विपक्षीय साझेदारी लगातार सुदृढ़ हुई है। भारतीय गुणवत्ता परिषद ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए गुणवत्ता और बाजार पहुँच को मजबूत करने के लिए सहयोग प्रणाली स्थापित करना है। गुजरात सरकार ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विकसित भारत डेटा सेंटर नीति 2026-29 का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य 8 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए गुजरात को भारत के अग्रणी डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इसका उद्देश्य राज्य में 6,00,000 करोड़ रुपये का निवेश और अधिक रोजगार सृजित करना भी है। ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक आज कोच्चि में संपन्न हुई। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों के सामने महिलाओं के विकास से जुड़े कई मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि ये साझा चिंताएं ब्रिक्स महिला मंत्रियों के मंच जैसे प्लेटफॉर्म के महत्व को दर्शाती हैं। ये सदस्य देशों के बीच संवाद और सहयोग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के लिए मूलभूत विज्ञानों का मजबूत आधार अत्यंत आवश्यक है। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के 15वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता ही देश के भविष्य में विकास और वैश्विक नेतृत्व की प्रेरक शक्ति होगी। तृणमूल कांग्रेस के 3 सांसद सुखेंदु राय शेखर, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। तीनों सांसद तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे। राज्य में पार्टी की हार के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान के सरकारी समाचार

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: பிரியங்கா அரோடா. मुख्य समाचार: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शांतिपूर्ण और स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया. ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनना चाहता है. मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया. राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया. सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी. ईरान ने अमरीका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया. जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए. और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई. इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की. दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया. हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया. वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग का प्रारूप जारी किया.
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी. हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे. फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की.
0: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए.
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है. ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी. न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है. इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को कार्यान्वित किया गया है. बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है. 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया. श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है.
1: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है. ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर. हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है. हम अधीर है, बेसब्र है. हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं.
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है.
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है. भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है. पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल

0: Country White. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में नवाचार, उच्च कौशल, रोजगार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाले ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
1: एक और भारत दुनिया में सबसे तेज गति से विकसित हो रहा देश है, दूसरी ओर दुनिया के तमाम देशों को भारत तकनीक, प्रतिभा और आगे बढ़ने के लिए उन्नत अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है, जिससे हमारे श्रोता अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम परिचित हैं। और यह है क्षेत्र भारत में वैश्विक क्षमता केंद्र। ये वैश्विक क्षमता केंद्र वस्तुतः क्या है, किस रूप में भारत ही नहीं दुनिया में अपना योगदान दे रहे हैं, और एक ओर प्रतिभा को उचित अवसर मिल रहा है, नए नए नवाचार हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हो रहा है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियों को आगे बढ़ने में योगदान दे रहा है। कुछ इन्हीं विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे अपने इस अंक में। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए आमंत्रित हैं डॉक्टर रंजीत मेहता, सीईओ और सेक्रेटरी जनरल पीएचडी सीआईआई। स्वागत है आपका डॉक्टर मेहता।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से आयोजित जीसीसी बिजनेस समिट को संबोधित किया।
3: Today, the greatest competitive advantage lies in generating knowledge, applying technology, and solving complex problems. That's what the GCCs are. It's not as if it's the slightly upgraded version of your backroom, back-off, or office space, the BOPs. No, this is a completely different domain. It has a lot of technology, no doubt, but the new human intervention, human skills and the human knowledge which gets crystallized, what makes this century going to stand out in the name of GCC?
1: शुरुआत डॉक्टर साहब हम यहीं से करना चाहेंगे कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हमारी जो वैश्विक

0: क्षमता केंद्र हैं वो किस रूप में योगदान दे रहे हैं, और उससे भी पहले समझना चाहेंगे आम जुबान में आम लोगों के लिए ये वैश्विक क्षमता केंद्र क्या हैं और किस रूप में यहाँ प्रतिभा का तकनीक का संगम हो रहा, बड़ी कंपनियों के लिए हम उत्पाद बना रहे।
1: पिछले अगर दशक में देखें तो भारत एक बहुत ही प्रेफर्ड डेस्टिनेशन हो गया है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए। और जो इससे पहले क्या होता था, भारत में सिर्फ बैक ऑफिस लोग रखते थे, उसमें कॉल सेंटर्स ये सब आते थे। लेकिन पिछले दशक में जिस तरीके से भारत में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और नए नए जो भारत के कार्यक्रम जो कि जैसे मेक इन इंडिया है, स्किल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, ये सारे नए नए जो कार्यक्रम आए उससे जो है एक भारत जो है एक इवॉल्व हो चुका है हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक सेंटर्स के तौर पे, जिसमें सिर्फ एक बैक ऑफिस ऑपरेशन तक ही ये सीमित नहीं है बल्कि जिसमें रिसर्च होती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, अब तो एक नया आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, इंजीनियरिंग है, फाइनेंस, फिनटेक, लीगल सर्विसेज, ऑल जो ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस हैं जिसमें जो भी चीजें यूज होती हैं, आज भारत उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हब बन चुका है।
0: जी।
1: आज भारत में 1800 से ज्यादा ऐसे ग्लोबल कैपेबिलिटीज सेंटर्स हैं जिसमें कि 20 लाख से अधिक लोगों को आज प्रोफेशनल्स को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अगर आप देखें इसमें जो कि भारत डेफिनेटली एक टैलेंट कैपिटल भी है, आज अगर आप देखें भारत जो है 65% जो भारत की जनता है वो 35 साल से कम उम्र के लोग हैं, तो भारत एक यंग कंट्री है। एक यंग कंट्री होने के नाते हमारे पास टैलेंट पूल है, बट टैलेंट पूल होने के साथ साथ हमने पिछले करीब दशक में देखा है कि भारत एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। आज जो भारत का आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया का लॉन्च हुआ था तब भारत में सिर्फ करीब 300-400 रजिस्टर्ड स्टार्टअप थे, लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं 1.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप जो है भारत के अंदर है, और भारत जो है दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप इनोवेशन की बात करते हैं, इनोवेशन कैपिटल बनाने की बात करते हैं, क्योंकि टैलेंट कैपिटल तो है ही भारत विश्व का, लेकिन एक इनोवेशन कैपिटल बनाने की दिशा में भी भारत जो है आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बनने जा रहे हैं इसमें जो है आगे चल के मैं समझता हूं आगे चल के सिर्फ एक कॉस्ट आर्बिट्रेज, क्या कॉस्ट के बेसिस पे कि भारत में लेबर सस्ती है, इस बेसिस पे ही आप अपना एक कॉम्पिटिटिव जो एडवांटेज है उसको आप नहीं ले सकते। आगे चलने के लिए हमें एक वर्ल्ड क्लास टैलेंट की जरूरत है, और उसमें कितना हम इनोवेशन करते हैं, कितना हम उसको ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को इसमें इंटीग्रेट करते हैं, इस पे डिपेंड करेगा। और जब हम एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं उसके जो तीन मुख्य पिलर होंगे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के, पहला पिलर मैं समझता हूं एक स्किल, कि क्या हमारे पास स्किल सेट्स हैं आज भारत में। आप टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, जेनरेटिव AI आ चुका है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, रोबोटिक्स है, सेमीकंडक्टर है, इस साइड डेटा एनालिटिक्स है, साइबर सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी भी ऐसी एक नया एक स्टेप आ चुका है जिससे जो है हर इंडस्ट्री अपना ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक चर्निंग हो रही है इंडस्ट्री में, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी 2070 तक नेट जीरो होने का अपना एक कमिटमेंट कर चुके हैं। अगर आप लंबी दिशा में अगर आप देखना चाहते हैं तो उसमें ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है जो हम करते आ रहे हैं वही सफिशियंट नहीं होगा, बल्कि इस दिशा में हमें अपने एजुकेशन को भी ले जाना है, तो जिससे कि भारत में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी भारत की आ चुकी है, भारत के अंदर इकोसिस्टम तैयार करना है जिसमें कि कंटीन्यूअस लर्निंग हो, जहां पे इंडस्ट्री, एकेडमिया, गवर्नमेंट सब साथ मिलके जो है जो हमारी वर्कफोर्स है उसको जो है हमें फ्यूचर रेडी बनाना है।
0: श्रोताओं, देश की राजधानी दिल्ली में आज भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से एक महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर केंद्र कई सारी बातों पर चर्चा हुई, बहुत सारे विचार रखे गए, और सबसे बेहतर हमारे विशेषज्ञ ने जो कहा कि एक ओर शिक्षा, प्रतिभा, कौशल, दूसरी ओर उद्योग, और तीसरी ओर देश की नीतियां इस दिशा में हो कि हम वास्तुतः दुनिया को दिशा दिखा सकें और तीनों का एकीकरण कर सकें। इस अवसर पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने कहा,
2: What is it that

0: AI can do to enhance productivity, enhance efficiency and effectiveness across a range of sectors? How is it that India can adapt AI, and what is it that India can contribute in this space? And which is why the thought was that India really needs to become the application and AI-based solution capital of the world, and the way in which we can actually roll out using our talent. What is the way in which we roll out AI for the rest of the world? Today, one of the things that many people, many experts do comment is that while there's a lot of investment taking place in building out data centers, in, you know, the chips that need to be done for this, the high bandwidth memory that needs to work in the data centers, on the infrastructure side, there's a lot of effort which is going on into building the models. But ultimately, all these are just the infrastructure piece of the play. What happens with what actually gets deployed at the enterprise level and at various levels? And the deployment of AI in enterprises is still lagging across the world, not just in India, but across the world. And that is truly where I think GCCs in India will come in and play that critical role.
1: डॉक्टर मेहता, यहाँ से दिशाएं स्पष्ट होनी शुरू हो रही हैं कि हमारा भविष्य क्या है और किस रूप में इसे कार्यान्वित करना है। यहाँ पर हमारा सवाल ये होगा कि जो लक्ष्य हम सामने रख रहे हैं कि उच्च कौशल और तकनीक का जो वास्तविक उत्पाद है एआई के ऐप के रूप में, वह किस रूप में पूरी क्षमता के साथ हम दुनिया के सामने रख सकेंगे।
2: अभी सेक्रेटरी ने भी कहा कि कैसे हम स्किल सेट्स को यहाँ पे सिर्फ बीपीओ जॉब्स, हमें बीपीओ जॉब के लिए ही नहीं काम करना है, बल्कि जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बन रहे हैं उसमें हमें हायर लेवल जॉब्स के लिए जो है अपने आप को तैयार करना है। तो उसमें जो पहला पिलर मैंने बताया स्किल है, और जो सेकेंड पिलर है वो होगा इनोवेशन। क्योंकि आप जो नेक्स्ट लेवल के जीसीसी आएंगे वो सिर्फ यहाँ पे भारत में सिर्फ ग्लोबल मैंडेट को सिर्फ एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं होंगे, बल्कि हमें एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करनी पड़ेगी, इनोवेशन का हब बनाना पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजीज पे काम करना है, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी पड़ेंगी, और उसके लिए हमें एक प्रोडक्ट हब बनाना पड़ेगा जिसमें कि हम विश्व के लिए इसमें प्रोडक्ट को बना सकें। जैसे कि मेक इन इंडिया हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको लॉन्च किया था आज से 10 साल पहले, उसमें कई सारी प्रोग्रेस हुई है। और क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है, इंडिया के पास एक बहुत ही यूनिक टैलेंट है। आप अगर देखें तो साइंटिफिक टैलेंट इंडिया में सबसे ज्यादा है। आप देखिए जो हमारी एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी है, जो प्रोवेस है, आपने देखा कि किस तरीके से कोविड के टाइम में भारत के एंटरप्राइजेस ने पूरी दुनिया में कैसे काम किया। भारत जो है एक फार्मा हब बन गया था कोविड के टाइम में, कैसे नई वैक्सीन हमने जनरेट की। तो एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हमारा एक स्ट्रेंथ है। और तीसरा जो हमारा स्ट्रेंथ है इनोवेशन के लिए, वो है हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम। क्योंकि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत ही काफी स्ट्रांग हो चुका है। आज हमारे देश में नए नए जो बच्चे हैं 18 साल, 20 साल, 30 साल से कम उम्र के जो युवा हैं, वो भी आपने देखा यूनिकॉर्न का स्टेटस ले चुके हैं। ऐसी ऐसी कंपनी देश में अभी आई है जिसमें कि 1.5 साल 2 साल के अंदर वो यूनिकॉर्न बन चुके हैं। यूनिकॉर्न वो कंपनी होती है जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन करीब, आज के अगर टर्म में देखें तो करीब 10,000 करोड़ से ऊपर जिसका वैल्यूएशन है, वो एक यूनिकॉर्न मानी जाती है कंपनी। तो ये हमारे देश में एक इनोवेशन का जो एक कल्चर बन चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें फर्दर इसको स्ट्रॉन्ग करना है, इंडस्ट्री, एकेडमिया और गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन करके एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ एक्सीलरेट करना है इनोवेशन को। तभी हम जो यूनिवर्सिटीज में टेक्नोलॉजी बनाई जाएगी उसको कैसे हम कॉमर्शियली उसको वायबल बनाए, इस पे हमें काम करना है, जिससे कि जो विश्व की समस्याएं हैं तो उसको हम भारत में टेक्नोलॉजी डेवलप करके उसको हम कैसे सॉल्यूशन निकालें। जो थर्ड पिलर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है, वो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। अब ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस कैसे आएगी? सबसे पहले हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, जो कि बहुत कुछ हो रहा है। आज अगर आप रोड की बात करें, भारत जो है विश्व का लार्जेस्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आज बन चुका है। तो इसमें ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स हैं भारत की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि हमारी पॉलिसीज स्टेबल हैं और हमारा जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है बहुत उसमें स्टेबिलिटी है, और हमारे पास आज एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग तैयार कर रहे हैं, उसमें बहुत कुछ हो चुका है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इतने सारे काम हो रहे हैं, और जो भारत का एक रिफॉर्म का जो मुहिम चली है वो बिल्कुल आगे चलती जा रही है। और डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करें, जिसमें कि 1.5

0: 4 बिलियन 140 करोड़ के देश में 100 करोड़ मोबाइल से वो लोग कनेक्टेड हैं। तो डिजिटल कनेक्टिविटी हमारे गांव तक है, लास्ट माइल तक है। ग्लोबली कॉम्पिटिटिव जो हम बनने की कोशिश कर रहे हैं इन्हीं सब चीजों से होता है। और इंडिया ने कई ऐसे रिमार्केबल इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे कि डिजिटल इंडिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसमें समय से पहले ही इन सब चीजों का ऐलान किया था और आज उसमें कई सारी प्रोग्रेस हो चुकी है। जैसे डिजिटल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, स्किल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। ये जो सारे रिफॉर्म्स हैं इससे जो है हमारे जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया में आ रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आर्बिट्रेशन के फील्ड में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के फील्ड में हमने काम किए हैं। इंडिया जो है अपने आप को एक वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इनोवेशन इकोसिस्टम बनने की तरफ इसमें काम कर
1: हो
0: रहा
1: रहा
0: है।
1: है। डॉक्टर मेहता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत में नवाचार, उच्च कौशल रोजगार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाले ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: कंट्री वाइड

0: So we enjoy exceptionally strong relations with countries like Saudi Arabia, UAE, Qatar, Oman, Iran, and even Israel, an achievement that very few major powers have managed. So this balanced approach enables us to engage all regional stakeholders without becoming entangled in regional rivalries.
1: Ambassador Vadhwa, what policy measures should India prioritize to strengthen its energy security?
0: I think what we should do is to have a long-term strategy which increasingly recognizes that genuine energy security requires diversification not merely of suppliers, but of energy resources themselves. So renewable energy, green hydrogen, biofuels, nuclear energy, and domestic natural gas production are gradually reducing our economy's dependence on imported hydrocarbons. And our ambitious target of expanding the renewable energy capacity represents not only a climate commitment, but also an important element of our national security. This transition, however, will take some time because oil will continue to dominate India's transport sector for many years, while natural gas will remain an important bridge fuel during the transition towards cleaner energy. Consequently, the stability in West Asia will remain as indispensable for India's growth trajectory throughout the coming decades. Also, we have to look at the overall welfare of our nearly 9 million people living and working across the Gulf region and their remittances, which exceeds $50 billion from the region. So we need to maintain a diplomatically excellent relations with all the countries in the region. And for that, we have to continuously work to keep our relationships on even keel.
1: Ambassador Anil Wadhwa, thank you so much for joining Akashvani's Insights program.
0: Thank you very much.
2: You were listening to a discussion on evolving situation in West Asia, implications for India's energy security. The participants were Anil Wadhwa, former ambassador, and Anubha Rohatogi, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
3: Insights.
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलियाई भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने की चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलावों का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
5: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को क्रियान्वित किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ

स्थित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का दौरा करेंगे। द्विपक्षीय सहयोग के तेजी से बढ़ते क्षेत्र के रूप में खेलों का जिक्र करते हुए दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण करेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी ART क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री

0: समिति का गठन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी एआरटी क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित कानून में धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, पहनने योग्य स्मार्ट उपकरणों और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिस्प्ले असेंबली, लिथियम आयन सेल और इंडक्टर कॉइल मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग होने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि यह कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं कल दूसरे मुकाबले में देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। भारत ने इंग्लैंड के साथ चौथे T20 मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को यह श्रृंखला ड्रॉ कराने के लिए आज का मैच हर हाल में जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. India and Australia today adopted a new joint declaration on defence and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deals were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the third Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said the Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia.
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: Later, briefing the media, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides finalized the administrative arrangement for a long-term supply of Australian uranium to India. The agreement is expected to strengthen India's clean energy program and support its net zero goals. The Foreign Secretary said the two leaders also reviewed progress in economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi today said India's aspiration to become one of the world's top three economies at the earliest is driven by the motto of Grow More, Achieve More. Mr. Modi was addressing the Indian community at the Marvel Stadium in Melbourne. Speaking at the Melbourne Meets Modi event, Prime Minister Modi also referred to Operation Sindoor. He said the operation demonstrated the effectiveness of India's homegrown defence systems in carrying out anti-terror operations. Mr. Modi said the India-Australia partnership has reached new heights, driven by shared values, strong people-to-people ties and expanding cooperation across key sectors. He described the 1 million strong Indian diaspora as a vital pillar of bilateral relations. The National Commission for Women, NCW, today constituted a high-level expert committee amid growing concerns over irregularities in the rapidly expanding assisted reproductive technology sector. The panel will undertake a comprehensive review of the regulatory framework and concerned laws governing IVF clinics and assisted reproductive technology centers and gamete banks, with a focus on protecting the reproductive rights, dignity and safety of women. Former judge of the Delhi High Court, Justice Asha Menon, will chair the expert committee. The government has waived the basic customs duty

0: on goods used in manufacturing of display assemblies, lithium-ion cell and inductor coil module with an aim to promote domestic production of electronic devices like smartphones, laptops, wearables and smart TVs. The Ministry of Finance has issued three separate notifications giving effect to the basic customs duty waiver on the goods used in manufacture of the three key components used in electronic devices. Iran has accused the United States of carrying out an airstrike near the Bushehr nuclear power plant. Iran's state news agency reported that the strike took place around noon today, hours after the U.S. military's central command said it had concluded its strikes on Iran. Earlier in the day, the United States launched fresh airstrikes on Iran, while Tehran responded with missile attacks targeting U.S. allied countries in West Asia. Sirens were reported in Bahrain, Kuwait, Qatar and Jordan, where the United States maintains military presence. In men's cricket, India were 10-4-0 in 1.3 overs against hosts England in the fourth T20 international of the five-match series at the County Ground in Bristol when reports last came in. India, led by captain Shreyas Iyer, elected to bat first after winning the toss. India trailed the series 0-2, making this a must-win game to stay alive. In FIFA World Cup, France will face Morocco in the first quarterfinal at Boston in US tonight. The match will begin at 1:30 a.m. Indian time. Spain will take on Belgium in the second quarterfinal match tomorrow, late night. And in the remaining quarterfinal matches, Norway will play against England, while defending champions Argentina will clash with Switzerland on Sunday morning. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रशांत कुमार मुख्य समाचार भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया के शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का इच्छुक मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया ईरान ने अमेरिका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया जवाब में बहरीन कुवैत और कतर में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए चीन के जिनजियांग शहर में एक जूता कारखाने में भीषण आग लगने से 28 लोगों की मौत फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से और विंबलडन टेनिस में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग का प्रारूप जारी किया
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी हम शिप बिल्डिंग शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की
1: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया श्री मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है
2: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है ये वो भारत है

0: जो कहता है ग्रो मोर एचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है, हम अधीर है, बेसब्र है, हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
1: इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस आयोजन की ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते सामान्य कूटनीति से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। ये मार्बल स्टेडियम में गूंजती तालियां और लोगों के उत्साह से बयां होता है। प्रधानमंत्री मोदी का एक महत्वाकांक्षी और विकसित भारत का दृष्टिकोण, जिसमें वैश्विक विनिर्माण में कामयाबी से लेकर ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत अहम मानवीय मदद तक शामिल है, साबित करता है कि भारत मानवता के हित में लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। इससे ये साफ होता है कि भारतीय समुदाय दोनों देशों की व्यवस्था और रणनीतिक रक्षा गलियारे को मजबूती दे रहा है, जिससे हमारा साझा भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बना रहे और हम आपसी भरोसे से जुड़े रहें। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विदेश सचिव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शिखर सम्मेलन में भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे। न्यूजीलैंड में प्रवासी भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट आज ऑकलैंड में जारी की गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर न्यूजीलैंड के राजस्व और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
3: ऑकलैंड में वाइटाकरे इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक समारोह में न्यूजीलैंड में बसे भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में भारतीय समुदाय की बढ़ती भागीदारी और उसके व्यापक आर्थिक प्रभाव का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय समुदाय उद्यमिता, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आतिथ्य, खुदरा व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए इन्फोमेट्रिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रेड ऑल्सन ने कहा कि भारतीय समुदाय न्यूजीलैंड के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले समुदायों में से एक है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि यह कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमरीका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। ईरानी मिसाइलों ने कुवैत और कतर को निशाना बनाया। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अमेरिकी हवाई हमलों से 2 दिन में 14 लोग मारे गए और 78 अन्य घायल हैं। चीन के जिनजियांग शहर में आज एक जूता कारखाने में लगी भीषण आग में 28 लोगों की मौत हो गई। आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय ने राहत और बचाव कार्यों के लिए पूर्वी चीन के फुजियान प्रांत के क्वांझाओ स्थित जिनजियांग शहर में एक संयुक्त कार्यदल भेजा है। मंत्रालय ने बताया कि कारखाने में दोपहर करीब 12 बजे आग लगी। ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक आज कोची में संपन्न हुई। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों के सामने महिलाओं के विकास से जुड़े कई समान मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि ये साझा चिंताएं ब्रिक्स महिला मंत्रियों के मंच जैसे प्लेटफॉर्म के महत्व को दर्शाती है, जो सदस्य देशों के बीच संवाद और सहयोग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
4: कोची में ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक महिला मंत्रियों के इस मंच पर पहली बार संयुक्त बयान को अपनाए जाने के साथ संपन्न हुई। ये बैठक महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 6 जुलाई से शुरू हुए 4 दिन के इस कार्यक्रम में ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक और ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक

0: बैठक शामिल थी। बैठक में ब्रिक्स डिजिटल डेटाबेस और ब्रिक्स डिजिटल क्षमता निर्माण दिशा निर्देशों के लिए भारत के प्रस्तावों का स्वागत किया गया। बैठक में समावेशी और सतत विकास के मुख्य चालक के रूप में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को दोहराया गया। स्मृति पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में चेक गणराज्य की करोलिना मोखोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। करोलिना ने सेमीफाइनल में अमरीका की कोको गॉफ को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में मार्ता कोस्तियुक का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से जारी है। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। भारत ने इंग्लैंड के साथ चौथे T20 मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। भारत ने ताजा समाचार मिलने तक चौथे ओवर में एक विकेट पर 29 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का इच्छुक। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। ईरान ने अमरीका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन कुवैत और कतर में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से और विंबलडन टेनिस में चेक गणराज्य की करोलिना मुचोवा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अभिनीत शुक्ला विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. India and Australia adopt a joint declaration on defense and security cooperation to ensure free and open Indo-Pacific, also ink deal for supply of uranium from Australia. Prime Minister Narendra Modi says, India aspires to be one of the world's top three economies driven by motto of Grow More, Achieve More. Addresses Indian diaspora in Melbourne. Iran accuses US of conducting airstrike near Bushehr nuclear power plant, attacks US bases in Bahrain, Kuwait and Qatar. 28 people killed in a massive fire at a shoe factory in Xinjiang city of China. In FIFA World Cup, France to face Morocco in the first quarter-final at Boston in US tonight. And in Wimbledon tennis, Karolina Mukova of Czech Republic reaches women's singles final. Now the news in detail. India and Australia today adopted a new joint declaration on defence and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deals were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the third Australia-India Annual Leader Summit in Melbourne. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said, "The Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia."
3: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
2: लेटर ब्रीफिंग द मीडिया, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री सेड, both the sides finalized the administrative arrangement for the long-term supply of Australian uranium to India. The agreement is expected to strengthen India's clean energy program and support its net zero goals.
4: The two countries have similar aspirations and a shared approach to ensure a free, open and prosperous Indo-Pacific region. One of the key outcomes today, adoption of the Joint Declaration on Defence and Security Cooperation, as well as an India-Australia Maritime Security Collaboration Roadmap. We also have the administrative arrangement for enabling the supply of uranium from Australia to India.
2: The Foreign Secretary said, the two leaders also reviewed progress in economic cooperation. The two leaders also reiterated their commitment to the Quad as an important platform for

0: The time now is 11 p.m. and coming up is the news in Hindi.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टिलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का भी दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। केंद्र सरकार जल्द ही फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए E85 ईंधन शुरू करने की योजना बना रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक

गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इसकी कीमत E20 पेट्रोल से लगभग 20 रुपए प्रति लीटर कम होगी। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना और सरकार के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में आज नोस्कोवा ने मार्ता कोस्तियुक को 6-4, 6-4 से हराया। महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला

0: Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Manoj Pathak.
1: Namaskar, Market Mantra ke tazan mein aapka swagat hai. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं देश के जाने माने वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: जी थैंक यू मनोज जी।
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अनुभा रोहतगी।
0: थैंक यू मनोज। Benchmark domestic indices rise, Sensex adds over 200 points, Nifty settles at 23,963. India and Australia sign landmark deals on uranium supply and dedicated critical minerals corridor. Also operationalize partnership in cyber critical technologies and supply chains. And global crude oil prices rise.
1: घरेलू शेयर बाजार में खरीदारी से प्रमुख सूचकांक लाभ के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 200 अंक से अधिक उछला, निफ्टी 24,963 दर्ज हुआ। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और डेडिकेटेड क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। साइबर सुरक्षा, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन के क्षेत्र में साझेदारी पर भी हुआ समझौता और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम बढ़े।

0: 26,742. The Nifty added 81 points to settle at 23,963. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index climbed 1.4%, while the Small-Cap 100 Index surged 1.8%. Earlier markets opened on a positive note and traded higher despite lingering geopolitical uncertainties. However, both indices spared their early gains in the final half hour of trade amid profit booking.
1: नजर डालें सेंसेक्स की 30 कंपनियों पर तो 30 में से 17 कंपनियों के शेयरों में आज तेजी देखने को मिली. बेहतर प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में सबसे ऊपर रही दवा कंपनी सन फार्मा, जिसके शेयर 2.7% लाभ के साथ बंद हुए. भारतीय एयरटेल और बजाज फिनसर्व दोनों को 2.1% से अधिक का मुनाफा हुआ. इंडिगो के भाव 2% से अधिक उछल गए. उधर घाटा उठाने वाली कंपनियों में प्रमुख रहे इन्फोसिस, जिसके शेयर 1.8% नीचे आकर बंद हुए. मारुति और एनटीपीसी के शेयरों में 1.5% की गिरावट देखने को मिली. एक्सिस बैंक को 1% का घाटा हुआ.
0: इन द सेक्टोरल इंडिसेस ऑन द बीएसई 22 आउट ऑफ 25 सेक्टर्स एंडेड इन द पॉजिटिव जोन अमंग द टॉप गेनर्स. रियलिटी जंप्ड 3.7%. पीएसयू बैंक्स रोज ओवर 1.7% एंड टेलीकम्युनिकेशन एडेड नियरली 1.7%. In contrast, utilities dropped 0.3%, IT fell 0.25%, and auto dipped 0.1%. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,825 companies advanced, shares of 1,424 companies declined, while shares of 167 companies remained unchanged.
1: नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 18 पैसे मजबूत हुआ. 95.38 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतरदिवसीय कारोबार में 101 पर चल रहा था. यहां पर समझना चाहेंगे सबसे पहले हम ये कि कल बाजार में दुनिया भर के बाजारों में हाहाकार के आसार दिख रहे थे और लग रहा था कि पता नहीं कितना लंबा चले. आज हमारे बाजार ने मजबूती दिखाई, क्या मुख्य कारण रहे?
2: देखिए मनोज जी, आपने जैसे बताया कि बहुत ही ऐसे हाहाकार जैसे हालात बने हुए थे, तो एकदम से मार्केट्स ने रिबाउंड किया और जैसे हमें लग रहा था कि शायद मार्केट आज के दिन भी गिरेंगी, कल का हालात तो ये बता रहे थे. लेकिन उसमें पहले तो ट्रंप साहब ने जैसे बोला कि भाई अभी कोई समझौता हो ही नहीं सकता.
0: जी,
2: आई विल नॉट लिसन ईरान, अभी मैं बात ही नहीं करूंगा. लेकिन उन्होंने फिर बाद में एक देर रात एक स्टेटमेंट दिया कि उनको कुछ फोन कॉल्स आ रहे हैं कि समझौते की बात वो करना चाहते हैं, तो जिससे कि मार्केट्स ने रुख अपना बदला कि शायद अभी भी स्कोप है, समझौता हो सकता है और किसी शांति प्रस्ताव की आगे संभावना हो सकती है, तो मार्केट्स ने अपना रुख लिया. ये टोटली वॉलेटिलिटी है जो एक्चुअल में तो जो भी कुछ हो रहा है हो रहा है, लेकिन जो न्यूज बेस्ड जो हम बातचीत के जरिए से जो एक वॉलेटाइल होती है मार्केट्स, उसमें जो ट्रंप साहब के स्टेटमेंट ही इसमें मेन ड्राइवर बनते हैं सभी इन उथल पुथल में. तो जहां तक मैं समझता हूं कि मार्केट्स में वॉलेटिलिटी अभी जारी रहेगी. मार्केट्स में मार्केट शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड कि भाई आज मार्केट ऊपर गया और कल फिर जाएगा, क्योंकि कुछ भी स्टेटमेंट और आ सकता है. तो यहाँ पे इन्वेस्टर को बहुत सोच समझ के, जिसको हम कहते हैं कि फूक फूक के कदम रखने वाली बात होती है, उस हिसाब से चलना होगा.
0: Dr. Sharma, I want to ask you one thing. Like we saw, of course, as we are discussing that despite the plunge that we saw yesterday, the markets recovered and very smartly today.
2: Yes.
0: Do you think, and one of the driving factors in the markets every day that we see is the prices of international crude oil prices.
2: Right.
0: Now, we have seen since yesterday the statement when it came, when you told, like you said, the US president made certain statements regarding the ceasefire with Iran and which saw the oil prices going up. But still, at the same time, the oil prices are still within that 80 to 85 or, you know, 79 to 85 dollars per barrel range. So do you think that is also because it's still at a comfortable, I would say, range,
2: right,
0: which is what is, you know, also like giving some scope or some kind of a comfort to the markets,
2: right,
0: that the oil prices are still, you know, in a manageable range?
2: Yes, exactly. Because earlier prices were more than 100 per barrel and many of the times more than 95. Now the prices are at 80 to 80. So these are significant.

0: low as compared with the peak of the prices due to the this tussle. So that's why markets are not taking the prices in a negative sense. The markets are still very, very positive that if Trump processes peace, then there is a great scope to move forward and to rebound significantly to the next level. Right. So that is the market breadth, that markets are only waiting the good words from the mouth of Mr. Trump.
1: Another factor, which I don't know, you'll have to tell us whether that has also worked in favor of the markets, you know, ending in green today. Yesterday, the IMF report came out, International Monetary Fund report, World Economic Outlook update came out, mm-hmm. according to which India's growth for this present calendar year has been projected at 7%. If you look at the overall picture, you know, the world, global, the growth of figures for the world has come to 3%, whereas for India, it is saying for this particular calendar year, that is 26, it has been projected at 7%. Do you think that's also a very big confidence booster?
0: Yes, that is a very big confidence booster, because we are the fastest growing economy in the world economic system, and we are significantly higher than the world average of 3%, and much higher than the advanced economies, even faster than China.
1: Yes.
0: China is at around somewhere between 4 to 4.5%.
1: Yes.
0: But India's growth, if you go by the numbers from 21, 22 to 25, 26, we are more than 7% on an average. And last year, in the last fiscal, in 25, 26, we grew at 7.7%.
1: Yes.
0: And for the current year, there are projections that India will grow at 6.6, or some projections are at around 7% also. And if the peace process deepens, if the peace is there, then India has every potential to grow at around 7% for the current year also. But India is always above the IMF projections.
1: Right.
0: I observed this since last many years, that India is above every projection of IMF so far during the last 6-7 years. In the calendar year and in the financial year.
2: यहाँ पर डॉक्टर शर्मा, हम आप ही के आंकड़ों को समझना चाहेंगे. मैक्रो के जो हमारे फिगर्स हैं वो क्या दर्शा रहे कि IMF की जो अनुमान होता है उसके भी ऊपर हमारा आखिरकार विकास बीते वर्षों में भी हमने दर्ज किया, और इस वर्ष भी यदि सब कुछ ठीक रहा तो हम बेहतर कर पाएंगे. क्या हमारे वो कारक हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं?
0: देखिए, हमारे जो कारक हैं वो मेजरली हमें जो सपोर्ट आती है, तो जो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन है, खास करके जो रूरल डेवलपमेंट, वहाँ से हमें बहुत सपोर्ट आती है. जो हमारी इकोनॉमिक, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि IIP नंबर्स है, IIP नंबर्स बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग लास्ट ईयर 10% से ज़्यादा ग्रो किया, और जो डिजिटल इकोनॉमी है बहुत अच्छे से बूस्ट कर रही है. तो जो IMF के एक पैरामीटर्स होते हैं जिनमें इस समय पे वो सभी संभावनाओं को देखते हुए कि शायद ये जो क्वैगमायर है मिडल ईस्ट का, ये इंडिया की ग्रोथ को इम्पैक्ट करेगा, तो वो सारे फैक्टर्स को लेके अनुमान लगाते हैं कि जो ग्रोथ है वो इस लेवल पे रहेगा. बट इंडिया का जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है, दैट इज सपोर्टेड बाय मेनी अदर फैक्टर्स आल्सो, लाइक द इनफॉर्मल सेक्टर इज ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली. उसका जो ग्रोथ है उसको उसको अनुमान करना कि वो कहाँ पे जाके आगे कंट्रीब्यूट करेगा, वो इस जंक्चर पे काफ़ी डिफिकल्ट होता है. व्हेन यू सी द नंबर्स, तभी वो जाके पता चलता है कि हमारा तो जो मैन्युफैक्चरिंग है, हमारा तो सर्विसेज सेक्टर है जो इस तरीके से ग्रो कर रहा है. तो कुल मिला के मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे नंबर्स हैं, दीज नंबर्स आर सिग्निफिकेंटली हायर देन द IMF नंबर्स. हमेशा मैं ये देखता हूँ.
1: Let's move on to the next story. Tata Consultancy Services TCS today reported its financial results for the first quarter of the current financial year, that is from April to June 2026. The company's revenue grew by 2.2% to 72,275 crore rupees on a sequential basis. On an annual basis, the revenue increased nearly 14%. However, net profit of the company dropped nearly 2.7% to 13,349 crore rupees quarter on quarter basis. The information technology major has declared an interim dividend of 12 rupees per share.
2: यहाँ पर हम समझना चाहेंगे पूरे IT सेक्टर की स्थिति को, और जो AI का एक कहने नई हवा चली है उससे दुनिया भर के बाजार प्रभावित हो रहे हैं, और खासतौर से पूरा सेक्टर IT सेक्टर का. तो हमारे यहाँ सर्विसेज के जरिए हमने कह लें कि अच्छी फसल काटी. आने

0: वाले दिनों में एआई हमारे आईटी सेक्टर को किस रूप में प्रभावित करने जा रहा है?
1: देखिए, मैं मनोज जी नहीं समझता कि जो एआई है उसका कोई खराब असर आईटी सेक्टर के ऊपर पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि एआई के आने से आईटी सेक्टर और भी अच्छे से ग्रो करेगा, लेकिन अभी जो आईटी कंपनीज के ऊपर दबाव आता है आप देखेंगे कि वो एआई का नहीं है ज्यादातर, वो ये जो क्राइसिस है मिडिल ईस्ट इसकी वजह से प्रभावित होता है। इसकी वजह आप देखेंगे कि जब भी कुछ ऐसी पीस प्रोसेस आती है तो ये शेयर्स भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, ऊपर भागते हैं। तो एआई का जो इम्पैक्ट है वो नहीं होगा कोई भी आईटी के ऊपर, ये मेरा मानना है कि दिस इज नॉट गोइंग टू इंपैक्ट नेगेटिवली द आईटी सेक्टर।
0: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं एशियाई शेयर बाजार। एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज खरीदारी तेज रही है, हालांकि कुछ स्थानों पर बिकवाली भी देखने को मिली। निवेशकों की खरीदारी से चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.6% लाभ के साथ बंद हुआ। जापान के निकेई 225 सूचकांक में 1.4% की वृद्धि हुई। सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स 1.2% ऊपर आ गया। दक्षिण कोरिया के कोसी में 0.6% से अधिक की वृद्धि देखने को मिली। उधर चलन के विपरीत ताइवान का ताइएक्स 0.8% लुढ़क गया। हांगकांग के हिंगसिंग में भी 0.7% की गिरावट हुई। अन्य आर्थिक खबरों पर ध्यान दें तो चीन में उपभोक्ता मूल्य में इस वर्ष जून महीने में वार्षिक आधार पर 1% की वृद्धि हुई है, हालांकि विगत मई में 1.2% की वृद्धि दर्ज हुई थी, यानी थोड़ा सा कम रहा। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये चीन के आंकड़े हैं तो वहीं के ये आंकड़े हैं, की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स वार्षिक आधार पर बढ़कर 4.1% दर्ज हुआ, जबकि विगत मई में यह वृद्धि 3.9% रही थी। यहाँ पर हम एशियाई बाजार पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। बाजार तो दुनिया भर के अमेरिका और ईरान के तनाव में प्रभावित हुए हैं, लेकिन विशेष रूप से हम पूरे एशियाई जोन को देखें तो क्या आसार लग रहे इन आशंकाओं का, युद्धों का, और ताजा जो लहर उठी है एक नए दौर की, उसका क्या असर पड़ता दिख रहा है आपको?
1: देखिए मनोज जी, जो एशिया रीजन है इसमें ज़्यादातर बहुत अच्छे से इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो मेजरली एक वर्ल्ड के जो ग्रोथ ड्राइवर भी हैं, जिसमें आपके इंडिया है, चाइना है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, तो ये सभी कंट्रीज बहुत ही अच्छे से बिल्डअप किया है, बहुत अच्छे से आगे ग्रो कर रहे हैं। तो जब भी कोई ग्लोबल लेवल पे ऐसी होती है हलचल, जो जैसे अभी हम मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं, तो उसमें वर्ल्ड डिमांड तो स्लो होती है बिकॉज दे आर द मेजर सप्लायर्स, तो उनके जो एक्सटर्नल इकोनॉमी है उसके ऊपर इम्पैक्ट तो आता है, तो ग्रोथ प्रभावित तो होती है, बट वो इतना भी प्रभावित नहीं होती कि वो बहुत ज़्यादा या नेगेटिव में चले जाएगी या बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। 1-2% का फर्क आता है, जैसे हमने लेमन क्राइसिस में देखा, जो 2008 में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो जो चाइना का ग्रोथ था वो लगभग कोई 10.25% से 3% फिसल के साथ पे आया था। इंडिया का 9% के आसपास से फिसल के कोई लगभग कोई 7.25% पे आया था, 6.5 और 7 के बीच में। तो इतना प्रभाव आता है जब भी कोई ऐसी बड़ी क्राइसिस आती है, ऐसे कोरोना के टाइम पे देखा गया
0: जी, जी, जी।
1: तो अभी भी वैसा ही प्रभाव है। तो मार्केट्स जब कोई ऐसी, जैसे कल की घटना थी, ट्रंप साहब ने एकदम से अनाउंस किया कि अब कुछ नहीं हो सकता
2: जी।
1: तो मार्केट्स एक समय धराशायी हुई, जो जिसको हमने हाहाकार बोला कि भी ऐसे, लेकिन जैसे ही वो कोई, उनके इंटरनल वीकनेसेस नहीं है इन कंट्रीज के, इनके मार्केट्स के, वो प्रभावित हैं जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं उनसे। तो जैसे ही उन्होंने रुख अपना बदला कि मेरे को फोन कॉल आए हैं, तो वैसे ही मार्केट्स ने अपना भी रवैया चेंज कर दिया, क्योंकि उनका इंटरनल तो कुछ भी नहीं है, दे आर ओनली वॉचिंग द इंटरनेशनल डेवलपमेंट,
2: बेसिकली रिएक्टिंग टू व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, एंड इट्स ऑल अ परसेप्शन
1: दैट
2: द मार्केट्स आर रिएक्टिंग।
1: अब आप देखिए कि कल जो जिस तरीके से मार्केट्स गिरी थी, 500-600 पॉइंट्स निफ्टी फिसला, और आज उतना, तो ऐसा इंटरनली ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि भाई कल कोई बहुत बड़ा वीकनेस आया इकोनॉमी में और एकदम से आज रिबाउंड कर गया। ये तो मेजरली जो ग्लोबल इम्पैक्ट,
0: यानी लहर भूचाल की जी, जो जी, बाजार में बयानों से पैदा होती है, उसी के शिकार हुए बाजार। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच

0: आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता कर द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में दोनों प्रतिनिधियों ने संयुक्त वक्तव्य जारी किया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को दीर्घकालिक ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम आपूर्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे भारत के स्वच्छ ऊर्जा उद्देश्यों को प्राप्त करने में मजबूती मिलेगी।
1: कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस, एम्बिशियस और विन विन होगा। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। आज हमने ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप ऑन साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स यानी AI पैक्ट की पहल ली है। हम मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर पर भी काम करेंगे।
2: डॉक्टर शर्मा, हियर आई वांट टू यू नो आस्क यू अ क्वेश्चन अबाउट इंडियन ऑस्ट्रेलिया हैव टुडे अग्रीड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑस्ट्रेलियन यूरेनियम फॉर इंडियाज सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट, स्पेशली यू नो व्हेन एट द if you look at the political the geopolitical situation right now, there's an energy crisis. From India's energy security point of view, this kind of an agreement, how important is it?
3: Yes, Anubhaji, this is a great development, because recently we were very very progressive with Japan also, and now with Australia, because we have to secure our critical minerals trajectory, because these are the growth drivers of the Indian economy in the in future, and to achieve our target of various things like the export target or the target of our GDP.
2: Yes.
3: Because when you produce, you need the inputs, and critical minerals one of the most important inputs for the technological developments. So I think we have already a great free trade agreement with Australia, and trade is increasing significantly, almost doubled during the last 5-6 years. So going forward, I believe that this relations, bilateral relations, will further deepen, and our trajectory of give and take will become more and more robust, and trade will flourish in the coming times.
0: यहाँ पर डॉक्टर शर्मा, हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे साइबर सुरक्षा की दिशा में, जिस पर भी महत्वपूर्ण पहल हुई है। दुनिया भर में जो साइबर हमले हो रहे हैं, उसमें आपसी समझौते और एक दूसरे को उचित समय पर हर तरह की सूचना देना, साथ ही तकनीक हस्तांतरित करना, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में हमारा समझौता होने जा रहा है, वह हमारी साइबर सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित होगा?
3: देखिए मनोज जी, जो साइबर सिक्योरिटी है, दैट इज नॉट इन आइसोलेशन। हम अगर कहें कि हम अपना साइबर सिक्योरिटी खुद कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है।
0: बिल्कुल,
3: वी हैव टू कोऑपरेट विद द इंटरनेशनली। तो हर एक कंट्री के साथ, जहां भी हमें कुछ आसार बहुत अच्छे नजर आते हैं, हमारा जो एक बिहेवियर है बायलेटरल रिलेशन, तो हमें उनके साथ साइबर सिक्योरिटी में भी कोऑपरेट करने में फायदा है, सो दैट हम आपस में अपना जो तालमेल करके जो भी हमले जैसे आपने बताया उनको ज्यादातर रुका जा सके।
2: Let's move on to the next story. The government has waived basic customs duty on goods used in the manufacture of display assemblies, lithium ion cell and inductor coil module, with an aim to promote domestic production of electronic devices like smartphones, laptops, wearables and smart TVs. The Ministry of Finance has issued 3 separate notifications giving effect to the basic customs duty waiver on the goods used in the manufacture of the 3 key components used in electronic devices. The exemption is in line with the government's efforts to promote domestic electronics manufacturing under the PLI scheme. The duty waiver will reduce import dependence and strengthen the electronics ecosystem with local production. A comment on this, how important is this decision to waive, and how will it strengthen and stimulate the domestic electronics manufacturing ecosystem?
3: Yes, Anubhaji, because we are significantly progressing in the domestic electronics ecosystem, and as you must have observed that our electronics, our mobile phones are now gaining great pace in the global

0: marketplace. And these are increasing significantly. Now we are the great exporter to many countries, to Africa and Europe and America. So going forward, government policies, particularly the ease of doing business and the PLI scheme, yes, for the such promising areas are very, very useful and beneficial for the producers and for the export markets. So going forward, I believe our electronic sector will become more robust, and this will support our overall trajectory of, yes, exports. Like, we have target of 1 trillion for the current financial year, and by 2030 we have 2 trillion target, 1 trillion from merchandise and 1 trillion from, okay, services. So such kind of promising sectors are required to move forward and to become very, very supportive for our overall exports.
1: Yahan par Dr. Sharma, hum aam shrotaon ke nazariye se samajhna chahenge ki ye sirf rajasv kamane ka zariya banega ya hamare gadget bhi thode saste ho jayenge custom shulk ghatne se.
0: Dekhiye, isme jo देखो, एवरी स्टेप इज फॉर दी वेलफेयर क्रिएशन.
1: जी जी,
0: सरकार कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेती है कि वो खाली अपना राजस्व को इंक्रीज करने के लिए होगा. पैसा जो कंज्यूमर, जो पीपल वेलफेयर है, दैट इज एट ऑलवेज एट दी फ्रंट एंड दी कोर ऑफ दी एजेंडा. जैसे अभी सरकार ने, आपने देखा होगा, जीएसटी में कितने रिलीफ दिए पीछे, जो कुछ 6 महीने पहले की बात है, तो कितना उसे हमारी कंजम्पशन ट्रैजेक्टरी कितनी मजबूत हुई.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: और डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड्स, हमारी जो ग्रोथ है वो कितना इंटैक्ट रही. 7.7% इज नॉट अ इजी टास्क इन सच अ क्वैगमायर ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट. हम फिर भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का हमारा खिताब जो है मौजूद है.
1: यानी प्रधानमंत्री जो कहते रहते हैं, आपदा में अवसर ढूंढने की कला भारतीयों ने सीखी, तो वो हम निकाल लेते हैं.
0: हमने प्रूव की है, वो नंबर्स बता रहे हैं कि हमने ऐसा किया.
2: Let's move on to commodities. Global crude oil prices rose today. Brent crude was trading 0.9% up at $78.69 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 0.7% up at $74.05 per barrel when reports last came in. And also, let's have a look at the prices of gold and silver in the Indian bullion market. 24-carat gold was trading 0.7% up at 1,45,140 rupees per 10 grams, while silver was trading trading 1.4% up at 2,26,540 rupees per kilogram a short while ago.
1: श्रोताओं, आइए आपको लिए चले मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जहां अगस्त अनुबंध वाला सोना समाचार तैयार किए जाने तक 0.6% महंगा होकर 1,44,626 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था. उधर सितंबर अनुबंध वाली चांदी 1.4% की बढ़त के साथ 2,26,500 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी. यहाँ पर हम समझना चाहेंगे, डॉक्टर शर्मा, आप लगातार सोने में बुलिश रहे हैं और आपके अनुमान समय की कसौटी पर हर बार खरे साबित हुए हैं. यानी मार्केट मंत्रा के श्रोताओं के लिए आप खरे विशेषज्ञ के रूप में सोने के मूल्य को लेकर दिखे हैं. तो अब यहां से सोना किस दिशा में जा रहा, अब के स्तर पर निवेश करना कितना उचित होगा और किस रूप में आगे बढ़ना चाहिए यदि कोई खरीदना अभी भी चाहे तो?
0: ठीक है, दोनों ही कंसोलिडेशन मोड में है, गोल्ड एंड सिल्वर. आपने देखा होगा कि अभी जो पिछले 5-6 महीने से जो रेंज है, खास करके फरवरी के बाद, वो गोल्ड में 2.30 और 2.60 के बीच में है और सिल्वर में 2.25 से 2.5 के बीच का रेंज बना हुआ है. तो ये रेंज थोड़ी देर और बरकरार रह सकती है, कंसोलिडेशन का मूड है. लेकिन इन द लॉन्ग रन, अगर हम आज से 3 साल या 5 साल का होराइजन लेके चले, तो प्राइसेस आपको इससे कहीं ज्यादा मिलेंगे आने वाले टाइम.
1: यानी आने वाले दिन में चमक तेज ही होगी सोने के, ऐसे आसार है. यहाँ बहुत संक्षेप में, निवेश करना हो सोने में तो कैसे करें?
0: देखिये, निवेश के लिए सबसे बढ़िया जो तरीका है वो ETF है. मैं सजेस्ट करूंगा कि ETF में करें, जिससे कि देश को भी फायदा और कंज्यूमर को भी, जिससे जो मनी भी है वो फाइनेंशियलाइजेशन होगा और उनको भी फायदा, तो सब जने.
1: यानी भौतिक सोना की जगह निवेश की दृष्टि से ETF सही सौदा. यहीं पर श्रोताओं की ओर से डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: जी शुक्रिया, थैंक यू.
2: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices rise. Sensex adds over 200 points. Nifty settles at 23,963. India and Australia sign landmark deals on uranium supply and dedicated critical minerals corridor also operationalized. Partnership in cyber, critical technologies and supply chains. And global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at the same time. For now, good.

0: बाय, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
2: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

0: வலித்தந்த பாடலோடு நிறைவு பெறுவது திரைக்காலம் நிகழ்ச்சி. சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பிரசாந்த் குமார். भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोड मैप का अनावरण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार देश को घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए मजबूत व्यवस्था तैयार कर रही है। श्री शाह ने कहा कि सरकार ने सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास किया है और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती गाँव में रोजगार और विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं।

विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में कल नोस्कोवा ने मार्ता कोस्तियू को 6-4, 6-4 से हराया। महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला शनिवार को लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में आज आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 159 रन का लक्ष्य दिया है। कप्तान श्रेयस अय्यर ने नाबाद 80 रन की पारी खेली। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 3 ओवर में 1 विकेट पर 22 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार देश को घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए मजबूत व्यवस्था तैयार कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में कल नोस्कोवा ने मार्ता कोत्स्यूक को 6-4, 6-4 से हराया। महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला शनिवार को लिंडा नोस्कोवा और कैलोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में आज आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। उत्तराखंड में आज तेज वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तर प्रदेश के

0: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। आधुनिक कूटनीति की नींव रखने वाली सभ्यतागत समानता का एक गहरा प्रमाण देते हुए सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण तीन प्राचीन कलाकृतियों को ऑस्ट्रेलिया भारत को लौटाने जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इन कलाकृतियों में देवी भद्रकाली का एक कांस्य त्रिशूल, नदी की एक भव्य ग्रेनाइट प्रतिमा और 6 सिर वाले कार्तिकेय की बेसाल्ट पत्थर की एक मूर्ति शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित कानून में धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर उस दावे का खंडन किया है जिसमें भारत आ रहे एक एलपीजी टैंकर पर ईरान के मिसाइल हमले की बात कही गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा कि साझा की जा रही तस्वीर पिछले वर्ष यमन के अदन तट के पास कैमरून के झंडे वाले एलपीजी टैंकर MV फाल्कन में हुए विस्फोट के बाद लगी आग से संबंधित है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में आज आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। बोस्टन में फीफा फुटबॉल विश्व कप का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला फ्रांस और मोरक्को के बीच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक मुकाबले में 0-0 की बराबरी है। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ajay Kumar.

0: உலகம் சுற்றும் வாலிபன் படத்திற்காக பாடல்களை பாடியவர்கள் டி எம் சௌந்தரராஜன், சீர்காழி கோவிந்தராஜன், கே ஜே யேசுதாஸ், பி சுசீலா, எஸ் ஜானகி, எல் ஆர் ஈஸ்வரி ஆகியோர். தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள், டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பிரசாந்த் குமார். भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेता ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए

0: के व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टिलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। आधुनिक कूटनीति की नींव रखने वाली सभ्यतागत समानता का एक गहरा प्रमाण देते हुए सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण 3 प्राचीन कलाकृतियों को ऑस्ट्रेलिया भारत को लौटाने जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इन कलाकृतियों में देवी भद्रकाली का एक कांस्य त्रिशूल, नंदी की एक भव्य ग्रेनाइट प्रतिमा और 6 सिर वाले कार्तिकेय की बेसाल्ट पत्थर की एक मूर्ति शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिकता संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। सरकार ने सोशल मीडिया पर उस दावे का खंडन किया है जिसमें भारत आ रहे एक LPG टैंकर पर ईरान के मिसाइल हमले की बात कही गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा कि साझा की जा रही तस्वीर पिछले वर्ष यमन के अदन तट के पास कैमरून के झंडे वाले LPG टैंकर MV फाल्कन में हुए विस्फोट के बाद लगी आग से संबंधित है। PIB ने नागरिकों को गलत सूचना फैलाने वाले ऐसे दावों से सावधान रहने को कहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। बोस्टन में फीफा फुटबॉल विश्व कप का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला फ्रांस और मोरक्को के बीच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक फ्रांस ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में आज आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। वहीं महिला सिंगल्स में कल लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अजय कुमार। India and Australia have adopted a new joint declaration on defence and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deals were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the 3rd Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said the Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia. Prime Minister Narendra Modi's official visit to

Mother, come on,

0: நேர்களே, இன்றைய இனிய ராகம் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை பேகம் பர்வீன் சுல்தானா அவர்களின் பாட்டு கேட்டீர்கள். சில நொடிகளில் இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள் அஞ்சலாகும்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பிரசாந்த் குமார். भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम

0: सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टिलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। आधुनिक कूटनीति की नींव रखने वाली सभ्यतागत समानता का एक गहरा प्रमाण देते हुए सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण 3 प्राचीन कलाकृतियों को ऑस्ट्रेलिया भारत को लौटाने जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इन कलाकृतियों में देवी भद्रकाली का एक कांस्य त्रिशूल, नंदी की एक भव्य ग्रेनाइट प्रतिमा और 6 सिर वाले कार्तिकेय की बेसाल्ट पत्थर की एक मूर्ति शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। सरकार ने सोशल मीडिया पर उस दावे का खंडन किया है जिसमें भारत आ रहे एक LPG टैंकर पर ईरान के मिसाइल हमले की बात कही गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा कि साझा की जा रही तस्वीर पिछले वर्ष यमन के अदन तट के पास कैमरून के झंडे वाले LPG टैंकर MV फाल्कन में हुए विस्फोट के बाद लगी आग से संबंधित है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रसल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। फ्रांस फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराया। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में देर रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में आज आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। वहीं महिला सिंगल्स में कल लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बनाई। ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। उत्तराखंड में आज तेज वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। विभाग ने अगले 4 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अजय कुमार। India and Australia have adopted a new joint declaration on defence and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deals were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the 3rd Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said the Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia. Prime Minister Narendra Modi's official visit to Australia has marked a significant milestone in India-Australia relations, with both countries taking several important steps to deepen cooperation across key sectors. Briefing the media, Foreign Secretary Vikram Misri said the discussions between Prime Minister Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese reflected the growing strategic partnership and close understanding between the two leaders. During the 3rd annual India-Australia

0: சில நொடிகளில் இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की, द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी

आज ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का भी दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। आधुनिक कूटनीति की नींव रखने वाली सभ्यतागत समानता का एक और गहरा प्रमाण देते हुए सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण तीन प्राचीन कलाकृतियां ऑस्ट्रेलिया भारत को लौटाने जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इन कलाकृतियों में देवी भद्रकाली का एक कांस्य त्रिशूल, नंदी की एक भव्य ग्रेनाइट प्रतिमा और छह सिर वाले कार्तिकेय की बेसाल्ट पत्थर की एक मूर्ति शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। फ्रांस फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराया। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में देर रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद रहते हासिल कर लिया। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। और अगर बात करें मौसम की, तो मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश में सक्रिय हो चुका है। उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।